आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

0: मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बँड 101.1 MHz वर आकाशवाणीचं हे नांदेड केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम चिंतन। चिंतन या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत विविधता या विषयीचे ज्योती सरोदे यांचे विचार।
2: श्रोते हो, आज आपण विविधता या विषयावर बोलणार आहोत। विविधता ही सृष्टीचा आणि मानवी अस्तित्वाचा मूलभूत आधार आहे। जगातील कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे एकसारखी नाही। प्रत्येक व्यक्ती, संस्कृती, भाषा, विचार, निसर्गातील सजीव आणि जीवनपद्धती या सर्वांमध्ये वेगळेपणा आढळतो। हा वेगळेपणा म्हणजेच विविधता होय। विविधता ही केवळ भिन्नता दर्शवत नाही, तर ती जीवनातील समृद्धी, सृजनशीलता आणि संतुलनाचे प्रतीक आहे। मानवाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये विविधतेचे योगदान अनन्यसाधारण आहे। म्हणूनच विविधता ही केवळ समाजाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब नसून ती प्रगतीची प्रेरक शक्ती मानली जाते। निसर्गामध्ये विविधतेचे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान आहे। पृथ्वीवरील असंख्य वनस्पती, प्राणी, पक्षी, जलचर आणि सूक्ष्मजीव यामुळे जैवविविधता निर्माण झाली आहे। प्रत्येक सजीवाचे पर्यावरणात विशिष्ट कार्य असते। जंगलातील वृक्ष वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड शोषून ऑक्सिजन निर्माण करतात। मधमाशा परागीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणतात, तर सूक्ष्मजीव मृत सजीवांचे विघटन करून जमिनीची सुपीकता वाढवतात। या सर्व सजीवांच्या परस्पर संबंधामुळे पर्यावरणाचे संतुलन टिकून राहते। जर एखादी प्रजाती नष्ट झाली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण परिसंस्थेवर होऊ शकतो। म्हणूनच जैवविविधतेचे संवर्धन करणे हे मानवाचे महत्वाचे कर्तव्य आहे। आज वाढते औद्योगिकीकरण, जंगलतोड, प्रदूषण आणि हवामान बदल यामुळे धोका निर्माण झाला आहे। त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक स्तरावर विविध मोहिमा आणि उपक्रम राबविले जात आहेत। सामाजिक जीवनात विविधता समाजाला समृद्ध आणि सशक्त बनवते। भारतासारख्या देशात विविध धर्म, भाषा, जाती, परंपरा आणि संस्कृती असूनही लोक एकत्र आणतात। उत्तर भारतातील पोशाख, दक्षिण भारतातील खाद्य संस्कृती

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM बँड 101.1 MHz वर आकाशवाणीचे हे नांदेड केंद्र आहे। सकाळचे 7:10 होत आहेत। आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्रावरून प्रसारित होणारे प्रादेशिक बातम्या आम्ही आता सहक्षेपित करीत आहोत।

देशवासियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है

एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान था। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ माँ के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत

0: अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी।

0: बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुजुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया

0: है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका जुंजारे अंकुर हॉस्पिटल नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दाम्पत्य का एक सपना खुशहाल परिवार बिरसाना होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दाम्पत्य का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना। यह हर 6 में से एक दाम्पत्य को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक अभी उपलब्ध है।

0: अभी समय है कि हम इस विषय में बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
1: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टेनलेस स्टील रिलिंग चे पाइप आणि कौलारू शीट
3: होलसेल दरात मिळण्याचे ठिकाण तेहरा इंडस्ट्रीज MIDC नांदेड। मोबाईल नंबर 90 75 55 56 11।
4: श्रोतेहो कार्यक्रमात यानंतर ऐकूयात जगजीत सिंग यांच्या स्वरातील पयाम सईदी यांची रचना, संगीत कुलदीप सिंग यांचं।

0: नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा संतोष बोमनाळे, अंश फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना।

0: जाने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव और मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक इसके लिए उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
1: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोते हो, कार्यक्रमात यानंतर ऐकूयात गुलाम अली यांच्या स्वरातील हबीब यांची रचना, संगीत गुलाम अली यांचं।

यंगिस्तान फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के बोल जीत गांगुली का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: शाहिद माल्या की आवाज में आप सुन रहे थे उड़ता पंजाब फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा शिव कुमार बटालवी ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना हॉलीडे फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल हिमेश रेशमिया की तर्ज और आवाजें आमंत्रिका विनीत सिंह और साथियों की।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। बैंग बैंग फिल्म के इस गीत में हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अन्विता दत्त के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हृदय गट्टानी की आवाज में ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म बैंजो से सुनिए ये गीत।

बैंजो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हृदय गत्तानी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और दिन भर जहां भी रहें, रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे

0: पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे ₹1,000 मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे ₹1,000 दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी

कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी, रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ही आकाशवाणीच्या सोलापूर केंद्राची निर्मिती आहे.
1: श्रोतेहो, आताच आपण आशा बगे लिखित भूमी या पुस्तकाचे क्रमशः अभिवाचनाचा भाग 18 ऐकलात आकाशवाणीच्या नांदेड केंद्रावरून.
2: नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है. इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय.
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका जुंजारे अंकुर हॉस्पिटल नांदेड़ से बोल रही हूँ. हर दाम्पत्य का एक सपना खुशहाल परिवार बिरसाना होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दाम्पत्य का यह सपना साकार होने नहीं देता. इनफर्टिलिटी का अर्थ एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना. यह हर 6 में से एक दंपत्ति को प्रभावित करता है. याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं. जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक अभी उपलब्ध है. अभी समय है कि हम इस विषय में बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन ले.
2: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी.
4: रसिक श्रोते हो, ऐकायला विसरू नका श्रोत्यांच्या भावना जाणून घेऊन त्यांची मनपसंद गीत प्रसारित करणारा कार्यक्रम फोन फरमाइश. या कार्यक्रमामध्ये ऐकू शकता आपल्या मित्रांसमवेत आपल्याला आवडणारी गाणी. मग या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी फोन करा दर बुधवारी दुपारी 12:30 ते 1:30 या वेळेत.
5: यासाठी आमचा दूरध्वनी क्रमांक 9404-7012-52 या क्रमांकावर फोन करा आणि आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात सहभागी व्हा. कार्यक्रम फोन फरमाइश.
4: श्रोते हो, फोन फरमाइश आता आपण ऐकू शकाल दर शनिवारी आणि रविवारी 10:00 ते 11:00 या वेळेमध्ये.
5: कार्यक्रम फोन फरमाइश.
2: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है. इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय.
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा संतोष बोमनाळे अंश फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नांदेड़ से बोल रही हूँ. हर दाम्पत्य का एक सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दंपत्ति का यह सपना साकार होने नहीं देता. इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना. यह हर 6 में से एक दंपत्ति को प्रभावित

0: करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव और मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक इसके लिए उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
1: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका जुंजारे अंकुर हॉस्पिटल नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दाम्पत्य का एक सपना खुशहाल परिवार बिरसाना होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दाम्पत्य का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना। यह हर 6 में से एक दाम्पत्य को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक अभी उपलब्ध है। अभी समय है कि हम इस विषय में बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन ले।
1: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी नांदेड केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे 10:45 झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम लोकसंगीत। लोकसंगीत या कार्यक्रमात आज आपण ऐकणार आहोत कमलाबाई पवार आणि सहकाऱ्यांनी गायलेली बंजारा गीतं।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखा

0: में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहां है जहां हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी।

0: डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
0: जी जी जी सुनाता हूँ, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
0: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए

0: कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
4: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
4: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही

0: शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
2: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
0: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोतेहो, आताच आपण एनसीईआरटीचा प्रायोजित कार्यक्रम ऐकलात उमंग। हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या नांदेड केंद्रावरून।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका जुंजारे अंकुर हॉस्पिटल नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दाम्पत्य का एक सपना खुशहाल परिवार बसाना होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दाम्पत्य का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना। यह हर 6 में से एक दाम्पत्य को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक अभी उपलब्ध है। अभी समय है कि हम इस विषय में बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा संतोष बोमनाए अंश फर्टिलिटी एंड टेस्ट बेबी सेंटर नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दाम्पत्य का एक सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दाम्पत्य का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न हो।

0: नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा संतोष बोमनाड़े, अंश फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दंपति का एक सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दंपति का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव और मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक इसके लिए उपलब्ध है। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी। जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका जुंजारे, अंकुर हॉस्पिटल नांदेड़ से बोल रही हूँ। हर दाम्पत्य का एक सपना खुशहाल परिवार बसाना होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी कई दाम्पत्य का यह सपना साकार होने नहीं देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारणा न होना। यह हर 6 में से एक दंपत्ति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक अभी उपलब्ध है। अभी समय है कि हम इस विषय में बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन ले।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोते हो, कार्यक्रमात यानंतर ऐकूयात सचिन आणि अनुराधा पोडवाल यांच्या युगलस्वरात सुधीर मोघे यांची गीतरचना। अरुण पोडवाल यांनी संगीतबद्ध केलं आहे सगळीकडे बोंबा बोम या चित्रपटासाठी, आणि या गीतास आपली आवड कळविणारे श्रोते आहेत मुक्काम पोस्ट खेरडावाडी तालुका जिल्हा हिंगोली येथून शहाजी बोडखे, नंदा बोडखे, सारिका, सुरेखा, आरवी आणि समस्त बोडखे परिवार यांच्याकडून या गीतास पसंती कळविली आहे। यानंतरचं पत्र आलं आहे पुणे येथून अक्षय कुमार सोनोने, प्रमिला सोनोने, शंतनू सोनोने, धनेश सोनोने, श्रद्धा, सागर, निशा आणि समस्त सोनोने परिवार यांच्याकडून या गीतास पसंती कळविली आहे। यानंतरचं पत्र आलं आहे जांभरुण तालुका अर्धापूर येथून दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, ऋषिकेश, पृथ्वीराज, कुमारी सांधवी, किशन आणि समस्त जोशी परिवार यांच्याकडून या गीतास पसंती कळविली आहे। यानंतरचं पत्र आलं आहे कोरडगाव तालुका पाथरी येथून नानासाहेब

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर तैयार है ना मेरे साथ सुरीला सफर में निकलने के लिए? मुझे पता है आप तैयार हैं। देखिए ना, बहुत ही एक सुंदर विचार है कि जीवन जो है एक संगीत वाद्य यंत्र के समान है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। जिस तरह एक वीणा या गिटार से निकलने वाली धुनें यंत्र की बनावट से ज्यादा उसे बजाने वाले वादक पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन की लय और सफलता हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों पर निर्भर करती है ना? तो फिर आप देखिए ना कि आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता हैं। हर परिस्थिति, हर सुख और दुख में ये आप तय करते हैं कि कौन सा सुर हमें बजाना है, यानी कौन सा काम हमें करना है। तो संगीत की तरह हमारे जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे वाद्य यंत्र। तो जैसे एक वाद्य यंत्र के सुर में रखने के लिए, उसको सुर में रखने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सीखने और धैर्य की जरूरत होती है ना? और यदि इन तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाता है तो क्या होता है, वे टूट जाते हैं, और अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो उनसे सुर नहीं निकलता। तो जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। बस यही बात हमारी गीत संगीत में भी लागू होती है। जी हाँ, हमारे संगीतकार जब किसी गीत की रचना करते हैं तो हर वाद्य यंत्र को कस के रखते हैं, और जब कोई निर्देशक उन्हें पर्दे पर फिल्माता है तो वहां पर भी उन वाद्य यंत्रों के साथ उन गीतों को गाया जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात? आज की हमारी जो टेक्स्ट है, आज का हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है कि अक्सर जब कोई किरदार अकेला होता है, उदास होता है या प्यार में होता है, तो पर्दे पर उसे किसी वाद्य यंत्र के साथ नायक या नायिका अपने जज्बात पेश करते हुए दिखाए जाते हैं। तब वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि स्क्रीन पर रोमांस, उदासी या दिल की गहराइयों को दिखाने का एक जरिया होता है। फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से लेकर आज तक एक खास वाद्य यंत्र पर कई जादुई गीत रचे गए हैं, फिल्माए गए हैं, और कई बार गानों की शुरुआत उसी वाद्य यंत्र की धीमी और मीठी मीठी धुन से हुई है। बाद में हाँ, अंतरा आते आते और सारे वाद्य यंत्र भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो आज हमारे दोस्तों को बताना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिनसे जुड़े खूबसूरत गीत आज मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं। इससे पहले हम उन श्रोताओं को बता दें जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, विविध भारती परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं और आपको अंदाज लगेगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र आज हम लेकर आए हैं। हमारे कई श्रोताओं ने तो सही लिखा है और कई श्रोताओं ने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की बात कही है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत, खय्याम साहब की धुन, साहिर लुधियानवी के बोल, जगजीत कौर की आवाज और फिल्म का नाम शगुन। याद करिए पर्दे पर नायिका कहाँ बैठी है, किस वाद्य यंत्र के साथ उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

जी, तो अभी आपने जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का ये गीत सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था खय्याम साहब ने। और हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज हम वाद्य यंत्र पियानो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए ये जो वाद्य यंत्र बज रहा है ये भी पियानो ही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि भाई आज पियानो से जुड़े कुछ फिल्मी गीत आप लेकर आई हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जिक्र कर दिया है, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, शंख, मृदंग, तबला, सैक्सोफोन, सितार और बांसुरी का। नहीं नहीं, आज हम बात करेंगे किस पर? पियानो पर। जो पियानो से जुड़े गीत हैं जहां पर नायक या नायिका की उंगली थिरक रही है पियानो पर। एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात जिस घड़ी निशब्द झरते हैं धरती की गोद में, तब दबे पांव सितार की झंकार तारों की ओढ़नी ओढ़कर सोए कंदील को जगा देती है। दुख सुख का कोई भी पल हो, वाद्य कोई भी हो, कुछ गीतों ने जीवन में बड़ा डांडस बधाया है। वाद्य कोई भी हो, ये हमारे संवेदना की दुनिया के सच्चे साथी हैं। ये गीत जो आज बजेंगे वे हमारी सांसों में तिरते हैं, कानों में उतर कर मन के अंतर्मन को विकल कर देते हैं। आज के सुरीले सफर में जीवन रस में डूबे गीत सुनने को मिलने वाले हैं। कल्पना को परवास देते इन गीतों की अनुगूंज पहरों पहर मदहोश किए रहती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। देखिएगा आपके जो गीत आपने लिखे हैं क्या वो गीत हमारी पसंद से मेल खाते हैं। आपने लिखा है कि आज मीठी धुनों से सुरीले संगीत से सजा है सुरीला सफर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के अनुसार आज के गानों में विभिन्न वाद्य यंत्रों की झनकार सुनने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर विषय है। जी हाँ, वैसे तो हर गाने में बहुत सारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमने जहां खास तौर से पियानो बजाया गया है उन गानों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि और वो वाद्य यंत्र और कोई नहीं पियानो ही है। आज हम पियानो पर बजने वाले गाने सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने गाने का जिक्र भी किया है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि नायक और नायिका को जब दुख और उदासी घेर लेती है तो दिल की व्यथा को उजागर करने के लिए वो गाने का सहारा लेते हैं और पियानो बजाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो सिर्फ लकड़ी, तार और चाबियों का ढांचा नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को सुरों में ढालने का एक जरिया है। जब इसकी सफेद और काली चाबियां पर उंगलियां थिरकती हैं तो मानो वक्त थम जाता है। पियानो की धुन में शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसकी धीमी आवाज जहां आंखों में आंसू ला सकती है, वहीं इसकी तेज और ऊर्जावान धुन थिरकने पर हमें मजबूर कर

देती है। बहुत सुंदर क्लासिक विचार ठीक हमारे आज के गीतों की तरह आपके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं और वैसा ही एक और गीत सुनते हैं, जहां कौन है देखिएगा, शायद दिलीप कुमार साहब की उंगलियां थिरक रही हैं। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद साहब की धुन।

जी हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभिनव अन्वेषण की पर्याय बन चुकी जोशी साहिबा का ये इबारत पूर्ण रूपेण कार्यक्रम अनुरूप है, जो सफर को सुरीला और नशीला बनाएगा। साज बिन आवाज अधूरी, यंत्र बिना मंत्र अधूरा, आवाज को अंजाम हासिल करने में इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदिकाल से पूजा आदि शुभ कार्यों और समारोह में इनका सम्मान होता आ रहा है। चाहे शंख हो, घंटी की ध्वनि हो, ढोलक हो, मृदंग हो, तबला हो, उसकी थाप हो, वाद्य यंत्र हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज के प्रसंग में पियानो और वायलिन का जिक्र है तो मन के शून्यता को पूर्णता प्रदान करने में सफल मानी जाती है। साज और आवाज से सज्जित सफर का बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में जिस वाद्य यंत्र की बात हो रही है वो है पियानो। हिन्दी फिल्मों में दिखाई गई ये वाद्य यंत्र अक्सर अमीर घरानों के घर की शोभा होती थी। प्यार में धोखा या बेवफाई के कारण हीरो और हीरोइन अपना दर्द इसी पियानो के साथ बांटते नजर आते थे। आपने गीत का जिक्र भी किया है, देखिएगा ये गीत हमारी प्लेलिस्ट में है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज क्या टेक्स्ट

0: पढ़कर लग रहा है वो साहस कोई और नहीं पियानो हो सकता है। ये हमारा मानना है जो खुशी और गम दोनों मौके पर हीरो या हीरोइन द्वारा अपनी खुशी या गम व्यक्त करने के लिए इस साज के साथ गाते देखा गया है। जैसे कि फिल्म अनाड़ी का इन्होंने गाना लिखा है, अनुपमा का, और भी बहुत सारे गाने इन्होंने आज लिख दिए हैं। हो सकता है आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएं। बताइएगा कितने गाने आपके गानों से हमारी पसंद मिली है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में आपने बहुत सुंदर विषय चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इबारत केवल एक वाद्य यंत्र की चर्चा नहीं करती बल्कि हिंदी सिनेमा की उस भावनात्मक विरासत को याद दिलाती है जहां सुर संगीत और संवेदनाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। जब पर्दे पर कोई नायक या नायिका अपने मन की अनकही बातों को शब्दों से नहीं बल्कि किसी वाद्य यंत्र की मर्दो धुनों के सहारे व्यक्त करता है तब वो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। उसकी मीठी तान कभी प्रेम की कोमलता बन जाती है, कभी विरह की कसक और कभी अकेलेपन की मौन व्यथा। बहुत सुंदर जी। तो अगला गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले हमारे दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे। पहला सवाल तो यही कि पियानो से जुड़े गीत बताइए जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप कौन कौन से गीतों का जिक्र करने वाले हैं बताइए, कौन कौन से ऐसे गाने हैं जहां नायक या नायिका इस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं और गीत गाए जा रहे हैं। हो सकता है आप जो गीत लिखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से हमारे पसंद के गीतों से मेल खा जाए। और हमारा दूसरा सवाल, क्या आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है? अगर हाँ तो कौन सा? जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उन्होंने वायलिन सीखा है और उनके बेटे को भी उन्होंने वायलिन सिखाया है, तो आप भी बताइए अगर आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है तो कितना सीखा, कितने साल सीखा और अब आप उसे बजाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात। अगला गीत सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम तीन देवियां। बताइएगा इसमें देवानंद तो वाद्यंत्र के साथ हैं यानी पियानो बजा रही हैं, सामने खड़ी हैं सिमी ग्रेवाल और ठीक पीछे कौन सी नायिका खड़ी उनका इंतजार कर रही है यानी उस गाने को सुन रही है।
1: हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी

तेरा शाम का हो गुमा सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देवानंद के साथ सिमी ग्रेवाल हैं और कल्पना मोहन हैं। बिल्कुल इस फिल्म में नंदा भी है, लेकिन इस गाने में नंदा जी नहीं खड़ी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साज के साथ गीत और भावनाओं का संगम लेकर आया है आज का सुरीला सफर। साज वो दर्पण है जिसमें शब्द अपनी भावनाओं को निहारते हैं। साज वो आधार है जिस पर गीत अपनी उड़ान भरते हैं। जहां केवल शब्द अधूरे रह जाते हैं, वहां ये उस भाव को पूरा कर देते हैं। गीत अगर मौन की भाषा है तो साज उस भाषा की आवाज है। इस बात पर पियानो, गिटार, बांसुरी, सितार और कई पाश्चात्य वाद्य याद आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत गीतों का खजाना दिखाई दे रहा है। आपने कौन सा वाद्य और गीतों की मोती चुन लिए, अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी कुछ गीत आपने लिखे हैं तो सुनिएगा, बताइएगा क्या गीत आपके हमारे गीतों से मिल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो के साथ साथ शायद हारमोनियम भी आज के गीतों में है। तो वैसे तो हमने कहा ना कि पूरे गीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन फिल्मांकन करते समय पर्दे पर जब हम देखते हैं तो नायक या नायिका उस पियानो के पास बैठे हुए बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन गानों को आज हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इट्स पियानो, सो मैनी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन पियानो इन हिंदी सिनेमाज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में जहां नायक नायिकाएं हाथ में कोई वाद्य यंत्र लिए गाते थिरकते नजर आते हैं, लेकिन पियानो की धुन पर सजी महफिल में गाती नायिका या नायक का गाना खुशियों में डूबा या उदास लम्हों को संजोए हुए है। दिल की भड़ास निकालते गीतों का क्या कहना, जहां ताली तो बज रही है लेकिन सामने बैठी माशुका विलेन के साथ ठिठोली करती उसे जला रही है और आशिक को बाहर चले जाने को मजबूर भी कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो में आज सिर्फ एक वाद्य यंत्र को नहीं समझा जाए बल्कि भावनाओं का अनुवादक रहा है ये। जब नायक या दिल टूटा हो, जब प्रेम अधूरा रह गया हो, जब यादें बेचैन कर रही हो या जब अपनी तन्हाई से बातें कर रहा हो कोई, तब अक्सर उसे पियानो पर गाना गाते दिखाया जाता है। पियानो की मधुर और गहरी धुनें मन के दर्द को शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। आपने

गीत का जिक्र भी किया है, शायद वो गीत आप सुन भी ले इस कार्यक्रम में, है ना? तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। आगे एक श्रोता का कहना है कि आज का सुरीला सफर वास्तव में सुरीला होने वाला है, क्योंकि इबारत पढ़कर मुझे लगा कि आज वॉयलिन की बात होने वाली है। जहां तक मेरा सवाल है, हम भी अपने आप को संगीतकार समझते थे और इसी धुन में वॉयलिन की क्लास भी लगा ली, पर कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत वर्षों पश्चात बेटे को भी वॉयलिन की क्लास लगवाई और उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। चार परीक्षाएं पास करके काफी कुछ बजाया है, लेकिन आम तौर पर जैसा होता है हम मध्यम वर्गीय परिवारों में कि नौकरी को वरीयता दी जाती है, समय अभाव के कारण वो भी इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। या आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर चाहे LDC UDC बैंक में काम कर ले या बाकी दूसरी पोस्टों पर चला जाए, लेकिन एक साज को लेकर वो उसे अपना शौक नहीं बनाए या उस पर अपना कैरियर नहीं बनाए, है ना? इस तरह की सोच में अक्सर बहुत सारे कलाकार छूट जाते हैं बहुत पीछे। अगला गीत लेते हैं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। जी हाँ, जॉय मुखर्जी और आशा पारिक की जोड़ी, देखिए कैसे बजता है ये वाद्य यंत्र। जॉय मुखर्जी से बजा रहे हैं।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज तक कोई भी वाद्य यंत्र नहीं सीखा, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर सुरीला सफर जिंदगी गुजर रही है, बेफिक्र मजा आ रहा है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दो बदन का गीत मनोज कुमार पियानो बजाते हुए मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहां जाएं, रफी साहब की आवाज में दर्द भरा गीत, शकील बदायूनी की कलम से और रवि का मध्यम संगीत बड़ा कर्णप्रिय लगता है। हमें पसंद है ये गीत, बजना चाहिए। हमें तो साज बजाना नहीं आता, हां हमारा लड़का ढोलक बजाता है जो जगह जगह भजन संध्या अन्य कीर्तन और स्थानीय कार्यक्रमों में जाता है। अच्छी बात है ना। वहीं एक श्रोता ने पियानो वादक जो है मशहूर जैज पियानो वादक कीथ जैरेट के बात लिखी है। 1975 का उन्हें कोलोन कॉन्सर्ट की कहानी के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है। इसे फिलहाल हम यहां नहीं ले पा रहे क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है, लेकिन शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, जिंदगी इत्तेफाक है और आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, आपके हसीन रुख पे गुजरा जमाना, ये बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई साज बजाना नहीं सीखा, लेकिन बचपन से विविध भारती को रेडियो पर सुनते सुनते आज ये दिन आ गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आपने लिखे हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है, दोस्त दोस्त ना रहा, धीरे धीरे मचल और पत्थर के सनम, और इसके अलावा तू कहे अगर अंदाज का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बांसुरी माउथ ऑर्गन और गिटार बजाना सीखा, काफी दिनों तक अपने विद्यालय और महाविद्यालय में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने कैसियो का कीबोर्ड जो उस समय बहुत शुरू हुआ था नेपाल से लाकर दिया, तब से मैं कीबोर्ड बजाता हूं और आज मेरे पास यामाहा का कीबोर्ड है जो मैं अमेरिका से लेकर आया था। बहुत अच्छी बात है कि आप वाद्य यंत्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आइए हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में भी ये गाना है जो कहते हैं कि भाई फिल्म संगम का गीत सुनाइए मुकेश की आवाज में, दोस्त दोस्त ना रहा। तो चलिए सुना देते हैं आप सबकी पसंद पर, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। राज कपूर साहब बैठे हैं वहां इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए। सामने कौन है? राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, है ना।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नजारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई, हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ और तबला भी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफी और लता साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है।

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा हंसते हंसते। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

साथियों, मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप धूली निखरी ओस से भरी शीतल सुबह में होता है। हर एक सुबह का अपना ही सौंदर्य है। स्वच्छ ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण का स्पर्श हमसे कहता हुआ प्रतीत होता है, जागो मोहन प्यारे, भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत हो। रात्रि के अपने विश्राम कक्ष में जाते ही सूर्य का रथ गतिमान हो उठता है और हम सभी निर्मल मन के साथ नई सुबह के कोरे पन्ने पर एक नए दिन का संकल्प लिखते हैं और मुड़ जाते हैं अपने जीवोन्मुख कार्यों की ओर।

हर नई सुबह हमारे लिए जागरण का संदेश होती है। एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ हमें कर्म पथ पर चलने का हौसला देती है। सुहानी सुबह के अद्वितीय सौंदर्य में हम शांत मन से प्रकृति के नैसर्गिक संगीत को सुनते हैं। ठंडी शीतल सुबह में सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते फूलों की सुगंध और पंछियों की चहचहाहट हमें ऊर्जावान बनाती है। फूलों की तरह खिलती महकती हमारी सुबहें हमारे जीवन को नित नई दिशा देती हैं। एक आस का सूरज हर दिन हम सभी के लिए उदय होता है।

हमारे जीवन में उल्लास भरती खुशियों की उजास लिए सुहानी सुबह हमारी आस का वो तारा बनकर चमकती है जो हमें हमारे सपनों की राहों पे चलकर एक नई पहचान नया आशियां बनाने को प्रेरित करती है, हवाओं पे एक नई कहानी लिखने का हौसला देती है। जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।

साथियों, हर सुबह एक नई आस को जन्म देती है और इस आस को हम जिंदगी कहते हैं। अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने

0: इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में

0: चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पर रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा

0: दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अपना घर।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और पहली जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी थी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच

0: करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी। और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहां भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गई, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ाने दी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को। और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए

0: आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं, या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव का छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही है, फलानी चाची आ रही है, फलानी जगह
1: कोई मत वाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, हाँ, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह, हाँ, जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, हाँ, आगरा वाले ताऊ जी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना, राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।

0: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी में ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं, यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा
1: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना
0: जी
1: बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी
0: जी
1: टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी
0: हाँ
1: वाली चाची, कौन सी वाली बुआ। तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे
0: जी
1: विघ्न आता, तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में
0: अगर
1: शादी है
0: कोई
1: तो।
0: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
0: जी
1: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उसपे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक, बरामदे तक गूंजते हैं,
0: बिल्कुल, बहुत
1: उसकी
0: सारी
1: बात अलग
0: छेड़छाड़
1: होती है।
0: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो
1: गया,
0: गए हो।
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है, और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
1: ज्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये भी
0: हाँ
1: होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं। एक
0: जी
1: गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें।

0: 19 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
1: अभी इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
1: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
0: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने की, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत न करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे, रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी, वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हां मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी, 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी, अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना, मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही है, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए, आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं, वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं, कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया, मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर

0: हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो, जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना है।
1: पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं, तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं,
0: जी
1: क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सब सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
0: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
1: अमूमन ऐसा होता है।
0: चलिए
1: अब
0: फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले।
1: सुनते हैं।

भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत।

0: गीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद भी होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूं, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी भी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही, तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
0: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: भी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के

0: मौसम में ये होता ही है, इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
1: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
0: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे पौध बोर्ड
1: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं,
0: हाँ
1: मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं, ताकि वो
0: ये
1: जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
0: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएं हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल। और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं
0: बिल्कुल
1: पहुंचता
0: सही
1: है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। तीन तीन चार चार दिन, कई बार महीनों
0: जी
1: तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
0: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं? तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंकर नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा।

0: भगवान तुम्हारा बनाव रखे, जोड़ाई मदेरा।
1: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ और आवाज है रफी की। गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दूसरों को श्रोता को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम

0: संगीत सुनना चाहता हूँ। रिम जिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, है ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रास्ते ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता था, सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है, इतना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना?

0: रात को?
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
1: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
0: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
1: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
0: जी मैम उसमें मेहनत का काम ज्यादा पड़ता है।
1: और उसमें से भी आप समय निकालकर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
0: नहीं
1: है।
0: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता। हमारा जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले,
1: अच्छी बात है,
0: सभी लोग सुनते हैं। फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमलता जी का गाया हुआ गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपनी ड्राई क्लीन का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में घर से निकलते ही कुछ दूरी
0: चलते ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी चुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या
1: बोल,
0: बात
1: और अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिल देने, सब सियाने मिल देने ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिल देने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिल देने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, सारा सपन प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता
1: जी,
0: दिया
1: जी,
0: है।
1: जी, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती हैं ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं, तो लोग बाग जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित तो गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत बोल है, पायले छुनमुन छुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नि जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार
1: और शायद मैंने
0: स्नेह।
1: दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया।
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती, तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना। हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे, लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना?
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? क्या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने की दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अमृत भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनको बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी हाड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ा कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको।
0: अरे
1: सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी विविध भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोनिंग कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन

0: मौत है हमारे लीडर।
1: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
0: जी, ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
1: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गांव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गांव?
0: हमारा गांव बहुत सुंदर है। ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
1: क्या बात है, पोहे और समोसे?
0: यस,
1: मुंह में पानी आ गया हमारे। देखिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हम एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी, आप गाना बता दीजिए।
0: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
1: फिल्म का नाम क्या है?
0: मुद्दत।
1: मोहम्मद अजीज की आवाज़?
0: जी।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी और

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छाया की।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रखकर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रखकर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूं। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर तो चाहे। मैं भूल चुकी हूं सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूं मैं अब सब, भूल चुकी हूं मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब। और मैं भूल गई हूं सब सब कुछ सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थी। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूं। अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

0: आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख

0: व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने।

0: विविध
1: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अशोक भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये परिंदा फिल्म का गाना था। खुर्शीद हिलौरी के बोल थे और संगीत आर डी बर्मन का था। मोहम्मद रफी की आवाज में हकीकत फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत मदन मोहन का है।

है मनाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा।

खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना।

0: तराने नए पुराने।
1: आप सुन रहे थे तराने नए पुराने कार्यक्रम।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज के शेष और कल दिन भर के कार्यक्रमों का लिखा जोखा। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। आज 8वीं कड़ी सुनिए का इंद्रधनुष में इनसे मिले कार्यक्रम में फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रात 8 बजे हवा महल में झलकी लो कर लो दर्शन। लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का। आज मदन मोहन संगीतकार की याद का दिन है और उन पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिए छाया की। 10:30 पर ढलती जाए रात। कल दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता दें। सुबह 6:05 पर वंदन बार, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, वायलिन का विहंगम संसार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी कल सुबह और शाम 6:45 पर। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। बोले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7 बजे, 7:30 पर। हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। इस श्रृंखला की 34वीं कड़ी लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा संगीतकार इलियाराजा पर। यह कार्यक्रम आप रात 9:30 पर दोबारा सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष कड़ी 34। हेलो सहेली कार्यक्रम दिन में 3 बजे होगा। इससे पहले 2:30 पर होगा सदाबहार नगमे। गीतों भरी कहानी श्रृंखला में कल सुनिएगा अरुण शेखर की कहानी उन दिनों की बात है। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे सुना जा सकता है। 5 बजे छाया गीत कार्यक्रम होगा 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7 बजे जयमाला सुनिएगा। 7:05 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। बजट एक कमाऊ बीवी का, हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे ये नाटिका सुनवाई जाएगी। लेखक मनोहर वर्मा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे आपके लिए। संगीतकार इलियाराजा पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। 10:30 पर ढलती।
1: दोनों सूचकांक कारोबार की समाप्ति पर बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहे।
2: Benchmark domestic equity indices fell from the day's high and ended the final session of the week with marginal gains of 0.14%. The Sensex rose 109 points to close at 77,100. The Nifty also added 34 points to settle at 24,056. The broader market on the National Stock Exchange underperformed.

0: outperformed the frontline indices. The Midcap 100 index shed over 100, over 0.5%, and the Smallcap 100 index declined nearly 0.5%. Earlier, markets opened on a positive note amid supportive global cues.
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: A substantial portion of the day's advances. The Sensex gave up over 700 points from its intraday high, while the Nifty slipped more than 200 points despite the late session pullback. Both indices managed to close with gains.
2: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 19 के शेयर आज गिरावट में रहे. सबसे अधिक नुकसान दर्ज करने वाले शेयरों में पावर ग्रिड लगभग 2.4%, बीईएल और टेक महिंद्रा प्रत्येक 1.7% तथा इंफोसिस 1.4% गिरावट के साथ शामिल थे. वहीं आज बढ़ने वाले शेयरों में 4.7% उछाल के साथ इंडिगो सबसे ऊपर रहा. महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 3.8% की तेजी दर्ज हुई और मारुति का शेयर 3.7% की भारी बढ़त पर बंद हुआ.
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 25 sectors ended in negative zone. Among the key decliners, mid-small private banks quality tilt index fell 1.6%, metal lost almost 1.4%, and oil and gas slipped 1.3%. In contrast, auto surged 2.3%, services added over 0.5%, and FMCG rose 0.5%.

0: अब सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है।
2: सो वेरी ब्रीफली, अभी ये क्वार्टर खत्म होने वाला है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स से? क्योंकि जो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, चाहे वो पीएमआई इंडेक्स हो, ग्रोथ फिगर्स हो, दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव। सो
3: सोनू, मुझे लगता है अप्रैल में जून जो पहला क्वार्टर है उसपे शायद हमारा हमको पूरे साल का कयास लगाना सही नहीं होगा। शायद उसका रियल इम्पैक्ट शायद ना दिखे हमको अप्रैल में जून के क्वार्टर में, जहां तक चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें और ना और साथ साथ अगर आप सरकार के भी बही खाते की बात करेंगे तो शायद कहीं उसको जल्दबाजी होगा। अगर हम सिर्फ अप्रैल जून क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है जो वेस्ट एशिया का जो इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है अगले दो क्वार्टर में थोड़ा दिखेगा, या सेकेंड क्वार्टर से हमको लगता है वापस ग्रोथ जो है पिकअप करती हुई दिखेगी। लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं जो डेफिसिट है या फर्टिलाइजर पे सब्सिडी पे जो खर्चा है, चूंकि एनर्जी कॉस्ट के रूप में जो हमने फर्टिलाइजर बहुत महंगे प्राइस पे इंपोर्ट किया, हालांकि वहां पे भी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी प्राइसेस कूल हुए हैं। जैसे क्रूड ऑयल अब तकरीबन प्री वॉर लेवल पे आ गया है, उसी तरह फर्टिलाइजर की भी कीमतों में गिरावट देखी गई है। लेकिन चूंकि हमने अपने ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा कृषि क्षेत्र पे इम्पैक्ट ना हो तो हमने पहले इम्पोर्ट कर लिया था और उस समय थोड़े प्राइजेस एलिवेटेड थे।
2: जी, रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज बढ़त दर्ज हुई। इस सप्ताह टेक कंपनियों में आई भारी गिरावट के दौर से उभरते हुए आज बाजारों में तेजी का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 5.4% के उछाल में रहा। जापान का निकेई 225 4.6% की भारी बढ़त में रहा। ताइवान का ताइएक्स 0.5% बढ़ गया। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.2% से ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक मामूली तेजी पर बंद हुआ। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक आज 1.4% से अधिक के नुकसान पर बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक तेजी पर थे। जर्मनी का डैक्स 0.7% से अधिक बढ़ गया था। फ्रांस के कैक 40 में लगभग 0.6% की वृद्धि थी और लंदन का फुटसी 100 0.5% की बढ़त पर था। सो दक्षिण कोरिया के फिगर्स राहत देने वाले हैं, 5.4% की बढ़त, कल 10% की गिरावट आई थी।
3: सोनू, दक्षिण कोरिया साउथ कोरियन जो मार्केट्स हैं वहां पे आप उनका अगर वो देखेंगे जो पूरा इंडेक्स है वो एक या दो कंपनीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हाँ अगर वहां गिरावट होती है तो वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन आज आप देखेंगे जो अमेरिकन बाजार में जो कल

0: 50 times. This transformation reflects one of the world's fastest clean energy expansions.
1: विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि बैठक का समापन 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के संयुक्त विज्ञप्ति को अपनाने के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, नवाचार, लचीले बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण से सहयोग की पुष्टि की गई। मंत्रालय ने बताया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का एक प्रमुख परिणाम ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ था। सो बहुत ही टॉपिकल ये हो रही है एनर्जी मीटिंग। एनर्जी सिक्योरिटी सीम्स टू बी द सबसे ज्यादा एक कंसर्निंग वो है
2: इशू। जो सोनू, उसमें सबसे अहम बात जो मनोहर लाल खट्टर जो हमारे पावर मिनिस्टर, उन्होंने जो अहम बात की कि जो हमारा शेयर ऑफ नॉन फॉसिल जो एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, वो शेयर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम पर ये बहुत बड़ा दबाव बनता रहा है या आरोप लगते रहे कि हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल या कोयले से जो हम बिजली पैदा करते हैं उससे काफी पर्यावरण दूषित होता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है।
3: Moving on, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today met Minister of Petroleum of Iran Mohsin Pakniad on the sidelines of BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana today. In a social media post, Mr. Puri said that during the meeting, both leaders explored opportunities to cooperate in the energy sector. He noted that India remains committed to enhancing energy security through dialogue, partnership and mutually beneficial engagement. Now, how much will Iran be part of India's energy strategy?
2: Rajesh, if you look traditionally, historically, Iran has been one of our very secure energy partners, and we've been importing huge quantities of oil and gas from Iran. So I hope post lifting of sanctions by US, I think Iran would again be one of our major suppliers of energy needs to India.
3: Okay. Global crude oil prices extended losses today. Brent crude was trading 0.9% down at $73.06 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading more than 0.8% down at $69.74 per barrel at the time of the last report. Siddharth, Brent crude is slowly and gradually sliding back towards the pre-war level. For India, which imports the vast majority of its oil? What does this mean for the current account inflation and fiscal math?
2: So that is, it's very important for us, very good news for us, because obviously we are large importers, so it obviously all the imports happen in dollars, so it gives relief to our forex reserves.

0: alongside deep mid wicket is Radha Yadav and Smriti Mandhana is fielding at long on. The next ball worked away on the onside. Deep mid wicket should come into play. It's been played quite nicely, so it will only result in one. Firdaus was pushing hard, but Mustari was very quick to turn her down and tell her that let's keep it down to one. One ball left in the power play. It's been a tidy performance from Bangladesh, although India have missed so many chances, and that's proved to be their undoing in a sense. However, considering all of that, 39 for 1 is a good score. 7 runs already of this over. How do they try to finish off this final over in the power play? Shefali Verma just looking to make a few adjustments in the field, possibly. A strong offside ring. There's a mid-off. There's a cover. There's a point as well as a backward point. This time pulled away on the onside, but there is a fielder in the deep. It goes straight towards Radha Yadav. Only a single conceded. 6 overs done. 40 for 1. The power play is over with Shefali's over producing 8 runs.
1: The power play Bangladesh ke liye kul milakar acha raha hai. एक विकेट सिर्फ गवाए हैं. 40 रन इन 6 ओवरों में बनाए हैं बांग्लादेश ने. हालांकि मौके अगर भारत ने भुनाए होते तो निश्चित रूप से स्थिति बांग्लादेश के लिए मुश्किलों भरी हो सकती थी. लेकिन फिरदौस ने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने अभी तक 23 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, 4 चौके लगाए हैं. बांग्लादेश की तरफ से अभी तक कोई छक्का आया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बांग्लादेश के लिए. शेफाली वर्मा का ये दूसरा ओवर था. कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 11 रन खर्च किए हैं, 5.50 की औसत से रन दिए हैं. किफायती रही हैं. श्री चरणी ने 2 ओवरों में 14 रन दिए. क्या उस छोर से गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा जहां से श्री चरणी अभी तक गेंदबाजी कर रही थी? उनका पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था, जिसमें 2 मौके भारत के पास आए थे, हालांकि दोनों फिसल गए थे नंदिनी के हाथों से. नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. ये मुकाबला काफी अहम है दोनों ही टीमों के लिए. अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल में रेस उसका भी बना रहेगा, और अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रहेगी भारतीय टीम. दक्षिण अफ्रीका का भी आज मुकाबला होना है भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से नीदरलैंड के साथ, और उस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका की टीम. आसानी से वो मैच जीत सकती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है. दिबायन
0: Absolutely, and for India, one believes that perhaps the crunch game will be the Sunday at Lord's when they face the Australians. And one thing's for sure, while Australia are a mighty team, history has shown that one team which has upset them a few times has been the Indians. So India need to perhaps just play a slightly braver brand of cricket. Thus far, they've seemed a little confused about the ideal 11, even today 2 changes. So if that continues, then that gives a little bit of an advantage to Australia. But I personally believe if they can rope in one more bowling option, that can do them a world of good. At the moment, they're playing an extra batter. In the initial matches, it was Bharti Fulmali. Since then, they've gone back to Yastika Bhatia. But if they drop one of those or both of those and play a bowler instead or a bowling all-rounder, then that just enables them to play Jemima Rodrigues at 3, Harmanpreet at 4, and then maybe go from there. Maybe have a Deepti Sharma or a Richa Ghosh at 5 and 6 respectively. And then the bowlers, all-rounders and the rest of them can get the runs.
1: Shayad ballebazon ki taraf se aatmavishwas abhi tak team management ko mila nahi hai. Agar hum मिडिल ऑर्डर की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो उतना सफल अभी तक भारत का सफर रहा नहीं है. टॉप ऑर्डर ने अगर बल्लेबाजी की है तो भारत ने अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, भारत को जीत मिली है. तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस मैच से भारत को वापस लाना होगा अगर सेमीफाइनल और आगे का रास्ता तय करना है तो. बहुत जरूरी है भारत के लिए मुकाबला हर लिहाज से. और अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है. नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आ रही है. 6 मैचों का अनुभव, 6 विकेट ही उनके नाम पर हैं और श्री चरणी की जगह उनको मोर्चे पर लगाया गया है. 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए हैं 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिरदौस 25 रन बनाकर खेल रही हैं, 23 गेंदों का सामना किया है. स्ट्राइक पर मुस्तारी, जिन्होंने 5 गेंदों में 7 रन बनाए. पहली गेंद को सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से, और मिड ऑफ से जब तक फील्डर पहुंचे वहां पर शेफाली वर्मा, तब तक 1 रन लेने का मौका था. इस 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला. स्कोर हो गया 41 1 विकेट के नुकसान पर. 102.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये गेंद थी. बहुत ज्यादा रफ्तार थी नहीं, लेकिन अपनी स्विंग से थोड़ा सा परेशान कर सकती है. हवा भी चल रही है इस समय मैनचेस्टर में. अगली गेंद को ड्राइव किया, कवर की तरफ मिसफील्डिंग हुई है. 1

0: रन जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर एक रन हुआ है और इस एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया 42 एक विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग का स्तर भारत का इस पूरे टूर्नामेंट में उतना अच्छा रहा नहीं है।
1: Yes, and today they began well, but one just feels that it's probably been a cascading effect. Since that dropped catch, there have been a few errors creeping into the fielding.
2: The cricket commentary will continue after a short Pipa update.
3: FM and Ekshekansh 1 MHz वर आणि न्यूज ऑन EIR या मोबाईल ऍपवर आकाशवाणीचं हे नांदेड केंद्र आहे। श्रोते आता सायंकाळचे 7:30 होत आहेत। आता प्रसारित करत आहोत शेतकरी बंधू भगिनींसाठीचा कार्यक्रम किसान वाणी। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां से दो ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है, और 15 रन प्रति ओवर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है।
1: Absolutely, it looks like it will probably be in the vicinity of 130-135 at the moment, and that will be a good total considering the strength of Bangladesh lies in its spinners. However, India has a power-packed batting lineup as well, make no mistake. In that top 6 or top 7, there are at least 6 players who have more than 1,000 runs in this format.
0: Aur naye over ki shuruaat, aur pehli gend par hi Bharat ko kya yahan par kamyabi mili hai, agli gend ki taiyari aur is gend ko khela hai ऑन साइड में एक रन के लिए 122 पांच विकेट का नुकसान पर। तेजी के साथ ये रन पूरा किया, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी। 122 सात विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर की यह दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर थी लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं। एक रन और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी, दो रन और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 पांच विकेट के नुकसान पर। राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है, राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए। चार रन आता हुआ,
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Yeah, it looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
0: Yes, so one wicket, we can say that Bangladesh has not lost the gendbaz, but retired out. बल्लेबाज अगली गेंद और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद, एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी और बांग्लादेश ने इस बीच अपना छठा विकेट गंवाया।
1: राधा फायरिंग इट इन, शी इज डन दिस वेल, शी इज एक्चुअली स्टक टू दिस फुलर लेंथ, ऑलमोस्ट अ ब्लॉक होल डिलीवरी, एंड रितु मोनी वाज जस्ट लुकिंग टू मेक सम रूम एंड एक्सेस द ऑफ साइड, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बॉल, इट्स द ओल्ड डिक्टम, यू मिस आई हिट, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड, अ लिटिल बिट ऑफ टर्न एंड दैट पुट पेड टू ऑल होप्स ऑफ रितु, बट शी इज डन अ गुड जॉब, शी स्कोर्ड 8 of 4 एंड इट्स जस्ट द काइंड ऑफ फिनिशिंग किक व्हिच दिस बांग्लादेश इनिंग्स नीडेड एज द 6 विकेट फॉल्स इवेंचुअली फॉर 128।
0: तो रितु मुनी इस गेंद को यॉर्क करा बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर, हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं, इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर। क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, यह देखना दिलचस्प होगा। सुवर्णा अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं, नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी। 3 विकेट ले चुकी है राधा यादव, अगली गेंद इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकवर्ड स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन से खाता खोला नई बल्लेबाज राबिया ने और स्कोर बढ़ता हुआ 129 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जो एक लक्ष्य माना जा रहा था कि हो सकता है इस मैदान पर कठिन 130-135 के आसपास का, उस तरफ तो बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है। उनकी गेंदबाज कितनी प्रभावी रहेंगी भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ, यह देखना होगा। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को हवा में खेला था, मिस फील्डिंग या कहीं की गेंद तक पहुंच नहीं सकी, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थी, लगभग उनके हाथों में गेंद पहुंच गई थी, डाइव जरूर लगाई इस गेंद के पीछे लेकिन पहुंच नहीं सकी, लगभग उनकी उंगलियों को छूते हुए गेंद पहुंची 4 रन के लिए।
1: And this is why somebody like Shona Akhtar is so useful for these particular situations, because she can be unpredictable as a batter. We've seen 2 of those boundaries in that similar position, just coming down the wicket and then making sure that she pierces the offside field with a lot of power. And it was that power and the placement which completely foxed Deepti Sharma, who was fielding at that mid-off position, diving away to her left but in vain. So Radha Yadav finishes her 4 overs, outstanding effort from her, 3 for 28 from her 4 overs. The other bowlers to have bowled out Deepti, none for 23 from 4. And apart from that, Nandini, N. Sri Charani, Renuka, all with 3 overs against their name, and Shefali Verma with 2.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रनों का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण टिकिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय धैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: शुक्रिया।
1: और साथ साथ जाने माने खेल पत्रकार शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। शशांक, बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। चेतन, सबसे पहले आपके तरफ, योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट।
2: देखिए, अगर आप बात करें, बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है। अगर आप बात करें, नंदनी काफी एक्सपेंसिव आज रही, लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते हैं। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ और आज हमने कैचेस छोड़े हैं। और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूं पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं। एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं, वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है। जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है। लक्ष्य 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले।
0: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इम्पोर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्तानी का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक,
4: बहुत ही बढ़िया कमबैक। और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक ऑपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज की फिर से यहां पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बोलिंग कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहां दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए।

0: जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है, आज वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं, वो पहले 6 ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
1: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है। 15 का स्क्वाड होता है, श्रियंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
2: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया। तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार वो ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है, और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
3: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं T20 में उनके नाम, बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और T20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं वो।
4: देखिए, आज 32 रन बनाए, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन बनाते हैं वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ से रन बने हैं। देखिए, हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी, साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32, तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीजें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए, बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और चेज हर समय प्रेशर में चीजें आसान नहीं होती। तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
0: मैं एक बार ये चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नजर आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहां पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो उनका वहां जिक्र होता है, ये उस तरीके की खिलाड़ी है।
3: जी, नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछे।
1: जी, तो भारत ने कैच ड्रॉप किए, लगातार ये चर्चा का विषय है। और शशांक, आपकी तरफ आऊंगा मैं, पहले 6 ओवर में हमने देखा 4 कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे, कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की

0: भूमिका को कैसे देखते हैं?
1: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली तीन चार जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, राधा यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने दो कैच छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिस फील्डिंग्स हुई, तो इससे ये क्यों हो रहा है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही है जहां पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले, तो इससे मुझे लगता है कि जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो हैं वो उतने आसान नहीं होंगे, और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है
2: जी। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है टी20 आईज में, तो 137 की चुनौती है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक विजय, फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर दो विकेटें ली है और इसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई है,
3: पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं अपने जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन से ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालती हुई नजर आती हैं, पहले 6 ओवर में डालती हैं और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवर में टी20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर है इस समय टी20 क्रिकेट में, जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंडसेट के बारे में भी बताता है कि वो रूप से भी कितनी मजबूत है
4: जी। जितन अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो भारत के सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां टी20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
5: देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं वो कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है, हरमनप्रीत मतलब 200 अभी आपने भी कहा 201 का इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए वर्ल्ड कप का प्रेशर है और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए इट हैज टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट, स्मृति की आप बात करें, शिफाली की बात करें, जमीमा की बात करें, दे हैव टू कम कलेक्टिव। देखिए बहुत भरोसा है, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि ऊपर के क्रम के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई करता है भारतीय टीम को, आप जाइए ऊपर से रन्स बनाइए, शिफाली और स्मृति की जैसे हम बात करते हैं ऊपर से अच्छा स्टार्ट दें, देन ऑटोमेटिकली आपके पास जमीमा है, उसके बाद आपके पास हरमनप्रीत है, आप देखिए ऊपर से स्टार्ट मिलेगा हर समय मिडिल ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करेगा, जब ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता ना देन स्ट्रगल शुरू होता है टीम्स का
2: जी। तो अच्छे शुरुआत की हम उम्मीद कर रहे हैं, एंड विजय once again we have to talk about Smriti and Shefali because they are the one who have to set the tone. How do you see this pan out and who do you think is going to be the biggest threat from Bangladesh for these two players?
3: I think if you look at their bowling, they have got opening bowlers. That's one thing. If you want to defend this, you have to take early wickets.
6: This samachar sandhya ke saath main Lavin Nigam. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या

0: 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के

0: मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
2: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
4: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।
3: Yeah, Ferdows, they have all kept wickets in the past. They are in the starting 11 as well. But if the skipper has to go off, then more than anything else, just that calm head and that experience goes off, and that's required in a chase, especially when the opposition has got off to a good start.
4: Yeah, or

0: लक्ष्य भी बहुत बड़ा तो रखा नहीं है। अगर भारतीय बल्लेबाजी की गहराई को देखें तो बांग्लादेश ने बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया है भारत को। 137 रन का लक्ष्य भारत की बल्लेबाजी के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है। वैसे में कप्तान की मौजूदगी अगर मैदान पर नहीं रहती है तो फिर बांग्लादेश की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि वो कैच लपकने की एक कोशिश उन्होंने जरूर की थी, पूरी तरह से आप चांस था, वो पूरी तरह से वो कैच नहीं था क्योंकि जो अनुमान लगा रही थी ऑफ साइड में वो जा रही थी, लेकिन वो गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लेग स्टंप की तरफ जाने लगी और वहां पर जो पूर्वानुमान था उनका उतना सटीक नहीं हो सका। कैच लपकने की उन्होंने कोशिश की, उनका ग्लव्स जमीन पर टकराया और उंगलियों कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हुई उनकी, उसमें थोड़ी सी चोट आई है। हालांकि अभी उपचार चल रहा है, कितनी फिट है ये देखना होगा।
1: Yeah, 31 without loss. This is still the third over in progress. A little fortuitous with that last boundary.

0: लपकने की एक कोशिश उन्होंने जरूर की थी, पूरी तरह से आप चांस था वो, पूरी तरह से वो कैच नहीं था क्योंकि जो अनुमान लगा रही थी ऑफ साइड में वो जा रही थी, लेकिन वो गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लेग स्टंप की तरफ जाने लगी और वहां पर जो पूर्वानुमान था उनका उतना सटीक नहीं हो सका। कैच लपकने की उन्होंने कोशिश की, उनका ग्लव्स जमीन पर टकराया और उंगलियों कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हुई उनकी, उसमें थोड़ी सी चोट आई है, हालांकि अभी उपचार चल रहा है, कितनी फिट है ये देखना होगा।
1: Yeah, 31 without loss. This is still the third over in progress. A little fortuitous with that last boundary. And one also felt that perhaps there was absolutely no bat. Maybe just hitting some foot marks and just skidding through. Eventually, everything's ready. The next ball driven on the up. And this time the catch has been taken. India suffered their first blow. Smriti Mandhana will have to go back. There might be a boundary check for this. But Rabia Khan, from the look of things, has pulled off an absolute blinder for Maruf Akhtar.
0: बहुत बड़ा नुकसान ये भारत के लिए। स्मृति मानधना चल पड़ी हैं पवेलियन की तरफ और भारत को ये संभवतः पहला झटका लगा है। हालांकि अभी अंपायर उस पर निगाह जरूर डालेंगी कि कैच पूरी तरह से सफाई से पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन स्मृति मानधना चल पड़ी हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। अंपायर ने उन्हें रुकने का इशारा किया है, वो अब रुकी है और अब तीसरे अंपायर द्वारा यह फैसला दिया जाएगा कि कैच सफाई से पकड़ा गया है या नहीं। स्मृति मानधना ने इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था, हवा में थी थोड़ी देर के लिए गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग इस मौके पर।
1: एब्सोल्युटली दैट बाउंड्री आल्सो रमेश परब आवर स्टैटिस्टिशियन इन्फॉर्म्स अस ब्रिंग्स अप 4500 रन्स फॉर स्मृति मानधना, बट द क्वेश्चन इज विल शी ऐड 4502 बिकॉज़ शी हैज गॉन अक्रॉस टू 4501 इन द प्रोसेस। Just outside off, it was driven on the up and Rabia Khan did ever so well. And most importantly, it does look like she's clung on. Absolutely no problems with it. She was at cover, it was traveling fast, but she was very decisive in moving across to it and making sure that she got her fingers right underneath the ball. And that's why Smriti Mandhana, you know as a batter often, when you see something being pulled off, you are aware of exactly what has happened. And that's why Smriti Mandhana's first instinct was actually to walk off towards the dugout. But just as a formality, the on-field umpire Kim Cotton went across to Anna Harris, who's in the TV umpire's chair, and Anna Harris is about to adjudicate on this soon. But India, from the look of things, have lost their first wicket. Is it a glimmer of hope? Because whatever happens, the only way that Bangladesh can come back into this contest is by picking wickets. Ideally, they would have wanted the wicket of Shefali, but for the moment, if they are able to get Smriti Mandhana out as well, that will do their cause a world of good. Just looking over those replays, the first point of contact seems absolutely fine. And to give the fielder some benefit of doubt, it does look like from every angle that she has gotten her fingers across. Whether that's also hit the grass at some stage or not is probably just a small point of contention. But then the TV umpire has to go by whatever is the visual evidence. And we will wait for that evidence, and that evidence is OUT. So the third over concludes. Maruf Akhtar, who was unlucky in the first over, but this time, thanks to an outstanding catch by Rabia, she has struck, and Smriti Mandhana has to go. India's top scorer in this tournament, 159 runs before this, but only 8 today.
0: जी हाँ, आज स्मृति मानधना का बल्ला उतना चला नहीं, उम्मीद थी उनसे बड़ी पारी की, अच्छी लय में लग रही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया। एक बार ये ऐसा लगा था कि कहीं कैच लपकने के बाद जब वो जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, उस गेंद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो गेंद जमीन को छू रही थी, लेकिन तीसरे अंपायर ने इस बात की वहां पर तस्दीक कर दी, इस बात की पुष्टि कर दी कि वो गेंद बिल्कुल सफाई से पकड़ी गई थी। और पहले विकेट का पतन भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम को, स्मृति मानधना के रूप में इनफॉर्म बल्लेबाज, और आज उनको 8 रन बनाकर वापस पवेलियन में लौटना पड़ा है। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है भारत के लिए, अगर वो कैच शेफाली का लपका गया होता तो और भी मुश्किलें भारत की बढ़ सकती थी इस मुकाबले में। इस ओवर की ये पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इस बार इसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, बड़ा और करारा प्रहार इस मौके पर। हालांकि एक बार ये ऐसा लगा कि गेंद में उतनी ज्यादा रफ्तार है नहीं, फील्डर पीछे कोई ज्यादा थी नहीं, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट और बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक 4 रन के लिए। पारी बहुत अच्छी अभी तक रही है।

0: शेफाली की और इस ओवर की शुरुआत उन्होंने 4 रन से की है। इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोलना चाहती थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, रफ्तार से चकमा खा गई, बल्ला अड़ाना चाह रही थी लेकिन रफ्तार से चकमा खाने के बाद बीट हुई पूरी तरह से इस गेंद पर।
1: Also, Dharmendra, the new batter in is Yastika Bhatia. We have seen her just struggle a little bit with some of her outfielding, and even her running between the wickets can be a little dodgy. I hope it doesn't lead to a run out between these two. They should just deal in boundaries.
0: Ritu ki agli gend is over ki aur is baar seedhe balle se khela bowler ki taraf wapas. Nirash apne se stroke se is mauke par Shefali Verma, unhe lag raha tha ki is gend par kuch run aane chahiye the. Unko laga ki agar aur zyada thoda पावर लगाती है इस स्ट्रोक के पीछे तो 4 रन भी निकल सकता था, लेकिन कोई रन नहीं इस तीसरी गेंद पर। चौथी गेंद के साथ तैयार रितु मोनी और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको खेला है खूबसूरत तरीके से पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर भाग रही, गेंद की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई है, एक रन और फिर दूसरे रन के लिए पलटी है। 2 रन के साथ शेफाली वर्मा पहुंच गई 28 पर भारत के स्कोर में और 2 रनों का इजाफा। बढ़िया कैच पकड़ा था उस मौके पर, बहुत ही पूर्वानुमान सही था, हालांकि एक बार ये ऐसा लगा कि शायद एक मौका मिल सकता है स्मृति को, लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डिंग की। 137 बनाना है भारत को, 37 रन बन गए हैं, इस बीच में एक रन और आता हुआ, इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38 एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल मिलाकर अभी तक 7 रन आ चुके हैं रितु मोनी का। ये थोड़ा सा महंगा ओवर, पहला ओवर है उनका और इस ओवर में अभी तक उन्होंने 7 रन खर्च किए हैं। यस्तिका भाटिया पहली बार स्ट्राइक पर, और जैसा हमारे साथी देवायन कह रहे थे कि उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ा सा सवाल जरूर है, फील्डिंग करते हुए थोड़ी परेशान दिखी थी, उस रफ्तार से भाग नहीं पा रही थी जब एक गेंद का उन्होंने पीछा किया था, गेंद की रफ्तार उनसे ज्यादा तेज निकली, उन्होंने पीछा करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से फिट वहां पर दिखी नहीं। इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगी और इस बार इस गेंद को उन्होंने सुरक्षात्मक तरीके से ऑन साइड में खेलकर 1 रन तो लिया ही, टाइमिंग बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा और 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका
0: और इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: So after 4 overs, India find themselves 2 runs ahead of what Bangladesh had managed in their entire power play. 40-1 was the score after 6 overs when Bangladesh were batting, but India have gotten off to a really rapid start, especially with Shefali Verma going great guns. She's on 29 and we just saw Yastika Bhatia, the very first ball that she faced, just punching it down the ground and picking up a 4. Yastika Bhatia does have absolutely no doubt about her ability to find the boundaries, which is why she's perhaps the ideal top order player to maximize those opportunities during the power play. It's once the power play eases and the field opens up, that's when she tends to have a few problems in terms of rotation of the strike and just finding those boundaries on a more regular basis. However, this is a solid foundation for India, not a massive total to chase. And interestingly, Nigar Sultana Jyoti continuing with Maruf Akhtar. So the in many respects the only genuine pace bowler in this side, continuing with her third over inside the power play. 4 overs bowled, 42-1. Shefali Verma on strike, Marufa comes in just outside off stump, driven successfully through covers for yet another 4.
2: Ye laga abha ka chauka.
1: That is just quality, that's strong wrists, it's good placement and it's very good positioning of the body in terms of what she's doing. Just looking to access the ball, walk towards it and then converting all of those into lengths that she wants to hit and picking up another 4. Takes the Indian score along to 46-1 and Shefali herself motoring along 33 from just 18 balls. And this is quite an exhibition of good power hitting. 5 fours and 1 6 in her innings thus far. 7 fours and 1 6 in the overall Indian innings thus far. As she shapes up to play once again, and this time punched towards the offside. And it's picked up at cover. No possibility of a run. Marufa comes back with a dot ball, but slightly expensive in her third over. 2.2 overs bowled, 1 for 23. A solitary wicket of Smriti Mandana going to Maruf Akhtar. The catch well taken by Rabia Khan at covers. But since then, there's nothing to cheer about because these two batters are looking to put the pressure right back. That last over from Ritu Moni, the first of her innings, costing her 11 runs. And that has meant that India have just gotten away to a blistering start and brought the required run rate significantly down. It's just in the vicinity of about 6 runs and over at the moment. As the next ball

0: ball is worked away on the onside and it's fielded at deep mid wicket. Comes back to Marufa on the bounce, and it brings Yastika on strike for the very first time. 47 for 1, 4.3 overs completed. India only chasing 137 to a record what will be their third victory of this campaign in four matches, with one match to come against the mighty Australians, multiple holders of the T20 World Cup crown. And if they are able to somehow ease through a victory in that, then that definitely brightens their chances of making it to the semi-finals. Two groups of six teams each, 12 teams in all, with the top two from both groups progressing to the semi-finals. India were eliminated ahead of the semi-final stage in the T20 World Cup 2 years ago. Outside off stump, and Yastika gets an outside edge, and it will run away to third for four. Didn't intend to hit it that fine, Dharmendra, but a good shot to bring up the Indian 50 as well.
1: Yeah, run kisi bhi tarah se aaye, run aane chahiye. Is mauke par jahan khelna chahti thi stroke, wahan to nahi khel paaye, lekin balle ka bahari kinara lekar gend gayi. Char run ke liye, ye bahut upyogi char run Bharat ke liye.
0: Yastika is batting at the moment at the strike rate of 400, so no worries about what she needs to do in terms of her running around, because she's absolutely bossing the opposition at the moment with the bat. Outside off stump, the first dot ball that she's faced, and it's driven towards cover. So Marufa again going for a few runs in this over, 9 runs of this, 1 for 28 her figures, 2.5 overs. And India coasting along quite nicely, 51 for 1, well ahead of where comparatively Bangladesh were, having registered 40 for 1 from their first 6 overs themselves. So a much more rapid start for the Indians. They've gotten across to that 50 in just 28 balls, says Venkat Bal Reddy. 46 balls were taken by the Bangladeshis. The next ball driven back. Was it a chance? Did Marufa grasp yet another attempt? Only time will tell, but it finishes with the dot ball. 5 overs bowled, 51 for 1. And judging by her body language, Dharmendra, that does look like that's another chance which has gone.
1: Yeah, lag to aisa hi raha hai ki shayad wahan par follow-through mein ek mauka tha. गेंदबाज के लिए मारूफा के लिए, लेकिन गेंद तक वो पहुंच नहीं सकी. और अगर ये विकेट भारत का गिरता तो जिस गति से रन बन रहे हैं, रनों की रफ्तार है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगता, क्योंकि बांग्लादेश ने जहां 44 गेंदों में 50 रन बनाए थे, वहीं भारत ने उसके मुकाबले सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन बना लिए हैं. बहुत तेज रफ्तार से इस समय भारत की तरफ से रन बन रहा है. खास बात यह है कि शेफाली वर्मा मैदान पर है, जो बहुत तेज बल्लेबाजी करती है. और पूरे मैच के दौरान जो एकमात्र छक्का लगा है वो शेफाली वर्मा के बल्ले से आया है, और बहुत बड़ा छक्का उन्होंने लगाया था, करीब 70 मीटर के आसपास का वो छक्का था. तो वो जब तक मैदान पर रहेंगी, तेज गति से रन आते रहेंगे. 5 ओवरों के बाद 51 है भारत का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर. और नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल किया है, और डीप मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया जा रहा है. तब तक शेफाली ने 1 रन लेकर अपना छोर बदल लिया, 35 पर पहुंच गई, और भारत का स्कोर हो गया 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शांजिदा इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, और जो सफलता मिली है बांग्लादेश को वो स्मृति मानधना का विकेट मिला है, बहुत बड़ा विकेट निश्चित रूप से. यस्तिका इस समय स्ट्राइक पर 4 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रही हैं. एक चौका अब तक उनकी इस पारी में आया है. इस गेंद को इस बार क्रीज से बाहर निकलकर उन्होंने खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन उनको भी मिलेगा. और इस तरह से स्कोर अब बढ़कर 53 1 विकेट के नुकसान पर. बांग्लादेश और भारत की अंक तालिका की स्थिति को अगर देखते हैं तो अभी दोनों टीमें बराबरी पर हैं. दोनों के कुल मिलाकर 4-4 अंक हैं. दोनों ने 1-1 मैच गंवाया है. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया, जबकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच गंवाया था. इस बीच में एक और गेंद जिस पर कोई रन नहीं आया. भारत ने पाकिस्तान को हराया था 64 रन से, नीदरलैंड्स को हराया था 95 रन से, दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली थी. अगली गेंद को इस बार लॉब किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और गेंद 4 या 6 रन अंपायर के इशारे का इंतजार, और अब इशारा आता हुआ 4 रन का.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस मौके पर, पूर्वानुमान बिल्कुल सही था शेफाली वर्मा का. क्रीज से बाहर थोड़ा सा अपने कदमों को निकाला, गेंद की फ्लाइट तक पहुंची, और फिर खेल दिया अपने सीधे बल्ले से ठीक सामने की तरफ. शेफाली वर्मा का

0: गेंद तक पहुंची नहीं और फिर से एक हाफ चांस जरूर फिसला है बांग्लादेश के हाथ से.
1: Hasn't led to any damage in terms of runs this time. 63 for 1, 6.1 overs bowled. Yastika once again. Ritu this time comes round the wicket, driven straight towards covers. And this was the point I was making, Dharmendra, that once the field restrictions are eased off, now with another two players who can go outside the circle, apart from the initial two, it just puts a little bit of pressure on Yastika Bhatia. She's more of a boundary hitter. And now she will need to try and maneuver the strike. This is better, just outside off stump, and she drives it away towards the sweeper cover and picks up a comfortable single. So the first run since the power play. 64 for 1 after 6.3 overs. Shefali back on strike. Now what gear does she go on? She needs one. She's literally one boundary strike away from getting through to her 50. A 6 will do just fine if she can get there. The Indians at the moment are looking quite relaxed in their dugout. And lots of smiles coming around, especially from Radha Yadav, who's made a successful return to the World Cup squad in this match. And I just wonder if India have finally found their perfect 11 going forward in this tournament, with one more match in the league stages against Australia to come. Next ball driven, but there's a sweeper cover in place and the throw comes in quickly and it restricts the run scoring to just one. 65 for one, 6.4 overs bowled. Two singles of this over after two dot balls. Much better pickings from Ritu Moni, who's come back for her second over, the first over producing 11 runs. Still remains to be seen what are the other bowling options and how do they use them. This time it's a lot fuller, straighter, driven down the ground, but good bit of fielding by Maruf Akhtar keeps the scoring down to just one. Exceptional, because when she hit it, Yastika Bhatia may have been forgiven for thinking that here are four runs for the taking. It was a crisp drive right down the wicket, but just not able to beat the fielder at long on, diving away to her right, Maruf Akhtar. Three singles of this over, 66 for one, seventh over in progress. One ball left to come as Ritu Moni comes in yet again. Shefali backs away, whacks it towards sweeper cover, picks up a single. Four singles of this over, four runs of it. 67 for one, India after seven.
0: 137 रन का लक्ष्य और 67 रन उसके जवाब में भारत ने बना लिए हैं. कुल मिलाकर अभी तक सात ओवरों की समाप्ति के बाद लक्ष्य बिल्कुल आसान सा भारत के लिए दिखाई दे रहा है. लय में दिखाई दे रही हैं समय शेफाली वर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक. और शेफाली 47 रन बनाकर खेल रही हैं, अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर हैं. और दूसरी तरफ उनकी साथी खिलाड़ी यस्तिका भाटिया भी उनका पूरा साथ निभा रही हैं. यस्तिका की कोशिश यही है कि स्ट्राइक रोटेट किया जाए और शेफाली को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए. बहुत ही अच्छी लय में दिखाई दे रही हैं इस समय शेफाली. 27 गेंदों में 47 रन बनाए हैं, 7 चौके, 1 छक्का लगाया है. 174.07 की स्ट्राइक रेट से उनके बल्ले से अभी तक रन आए. दूसरी तरफ यस्तिका भाटिया, जिन्होंने 9 गेंदों में 11 रन बनाए हैं, 2 चौके उनकी भी पारी में हैं. पिछले 5 ओवर्स में भारत ने 45 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत और इस पहली गेंद पर 1 रन आता हुआ, इससे स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब 69 रन चाहिए भारत को 77 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए, यानी 6 रन प्रति ओवर से भी कम की औसत से भारत को रन बनाने हैं. यस्तिका भाटिया इस समय स्ट्राइक पर 48 पर हैं. शेफाली वर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर. अगली गेंद को इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ यस्तिका ने 1 रन के लिए. 69 हुआ भारत का स्कोर 1 विकेट पर. और अब स्ट्राइक पर आ गई एक बार फिर से शेफाली वर्मा, अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर हैं. 76 गेंदों में भारत को चाहिए 68 रन. धीरे धीरे भारत लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ. राबिया इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और उनके सामने शेफाली. इस बार कट किया बल्कि कवर की तरफ खेला इस गेंद को. फील्डर भाग रही है, कोई फायदा नहीं, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: एक बार ये ऐसा लगा कि वो कट करने जा रही है गेंद को, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने बल्ले का पूरा मुंह खोला और कवर की तरफ इस गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए. इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ. 29 गेंदों में 52 रन उन्होंने पूरे कर लिए शेफाली वर्मा ने. और शानदार अर्धशतक दिवायन शेफाली के बल्ले से.
1: Absolutely, and the one who will be feeling the pinch really, two players in particular, Maruf Akhtar and more importantly Nigar Sultana Jyoti, because she was on 4 when she was dropped. It could have been a completely different game.
0: गेंद इस बार बीट हुई है पूरी तरह से शेफाली।

0: not let Bangladesh suddenly come back and get a foothold in this match.
1: जी हाँ, दो सलामी बल्लेबाजों का विकेट लेने के बाद तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उनका मनोबल वापस लौटा होगा अगली गेंद, और इस गेंद पर कोई भी रन नहीं.
0: And interesting, it's Richa Ghosh who's come in at number 4. So India looking to up the ante and perhaps just try and finish this match in a hurry. So maybe that net run rate is also something that the Indians have kept in mind. But beautiful ball, the very first ball from Nahida. And Richa just showing the same thing to Yastika, that the ball was tossed up again, flighted outside off stump, beats the outside edge. Beautiful first over, one wicket and three singles of it. 9 overs bowled, India 76 for 2.
1: भारत को यहां से अभी भी 66 गेंदों में 61 रन चाहिए. 8 विकेट सुरक्षित हैं और पिछले ओवर में बहुत ही बेशकीमती विकेट भारत ने गंवाया है. आउट होने वाली बल्लेबाज शेफाली वर्मा, जिन्होंने अर्धशतक जरूर बनाया, 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुई. और 76 जब भारत का स्कोर था तब भारत ने वो दूसरा विकेट गंवाया और अच्छा खासा ओवर समाप्त हुआ नाहिदा अख्तर का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए और शेफाली वर्मा जैसा महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रही हैं. रन रेट भी थोड़ा सा भारत का नीचे आया है विकेट गंवाने के बाद. यस्तिका भाटिया और ऋचा घोष की जोड़ी मैदान पर है. ऋचा घोष को, जैसा देवायन ने बताया, कि संभवतः इसी सोच के साथ मैदान पर भेजा गया है कि भारत जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहता है ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके. भारत का नेट रन रेट के मामले में अभी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद. दक्षिण अफ्रीका उससे नीचे तीसरे स्थान पर है. इसी वजह से अंक तालिका में अंक बराबर होने के बाद भी जो है वो भारतीय टीम आगे है.
0: One more catch drop because this was played straight back at Rabia but just not able to hold on. Yastika Bhatia living dangerously.
1: जी हाँ, एक और मौका भारत के विकेट का था. बांग्लादेश की गेंदबाज राबिया के पास फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका आया था. यास्तिका ने सीधे सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला था. आसान सा कैच हो सकता था लेकिन ये मौका हाथ से जाता हुआ. दो कैचेस तो अभी तक बांग्लादेश ने भी कम से कम टपका है. इस बार इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया है विकेट के पीछे की तरफ और ये 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बिल्कुल आसान सी ये गेंद थी यास्तिका के लिए. दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी, फॉलो थ्रू में एक मौका आया था और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद. आसानी से इस गेंद को देखा, छोटी गेंद भी थी और पूरा फायदा उठाया, खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए. इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 80 2 विकेट के नुकसान पर. 2 विकेट भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के गंवाए हैं. पहले स्मृति मानधना का विकेट गंवाया और उसके बाद शेफाली वर्मा आउट होने वाली बल्लेबाज थी. ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है. 2 गेंदों का सामना किया जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं. 57 रन अब चाहिए भारत को. 64 गेंदों का सामना करना है. 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का. अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी. गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है. 2 रन और फिर क्या ये 30 रन के लिए पलटेंगी. जी हाँ, 30 रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ. 1 रन जरूर इस मौके पर बचाया फील्डर ने. 3 रन और आता हुआ यास्तिका के बल्ले से 83 हो गया भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर. यास्तिका भाटिया पहुंच गई 15 गेंदों में 21 रन पर. उनकी पारी में अभी तक 3 चौके आए हैं. आज फील्डिंग दोनों ही तरफ से उतनी अच्छी हुई नहीं है. भारत को भी सोचना होगा अपनी फील्डिंग पर ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच से पहले, क्योंकि उस मैच में एक भी मौका गंवाना यानी पूरे मैच का परिणाम बदलने के समान हो सकता है. अगली गेंद इस ओवर की 4th गेंद और इस गेंद को इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास और गेंद को रोक लिया गया. रन इस मौके पर कोई भी नहीं बनेगा. इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं. 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी राबिया की बची हुई हैं. ऋचा घोष स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदें खेल चुकी हैं. ऋचा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है. यास्तिका दूसरे छोर से वो काम कर रही हैं जिस भूमिका के लिए ऋचा को मैदान पर बुलाया गया है. 15 गेंदों में 21 रन बनाए हैं यास्तिका ने. रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए 5.22 का और वर्तमान रन रेट 8.58 का. अंतिम गेंद इस ओवर की और इसको खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन के लिए पलटने का

0: outside off, so it would have gone on and missed the off stump in any case, perhaps. But yeah, impact outside off. India earn a reprieve, and Richa Ghosh given out. LBW at 9 is spared because of the timely review that she took.
1: जी हाँ, बहुत सही समय पर उन्होंने वक्त गंवाए बिना रिव्यू लिया और उनके पक्ष में गया ये रिव्यू, और इस तरह से जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा था वो टल चुका है.
0: Nahida Akhtar in her second over, second consecutive time that she has almost picked up a wicket, and again it begs the question, what was she doing coming in as the fifth bowler? So some strange decisions from Bangladesh, perhaps a little bit too defensive in their overall approach, especially while defending 137. Last ball, played back towards the bowler, and she does a great job diving away to her right and making sure that there's no runs on offer. 11 overs bowled, 94 for 2 India.
1: तो ये ओवर काफी कुछ घटनाओं भरा रहा. एक ऐसा मौका भी आया जब ऋचा घोष को अंपायर ने आउट करार दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, और उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि इंपैक्ट जो था गेंद का वो ऑफ स्टंप के बाहर था, और ऋचा घोष बच गई. हालांकि अंपायर का फैसला बांग्लादेश के पक्ष में जरूर गया था, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से ऋचा घोष मैदान पर अभी भी मौजूद है, और भारत का स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद. रन रेट अभी भी भारत का 8.54 का, रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे आता हुआ 4.77 का, और अंतिम जो 5 ओवर रहे हैं भारत के लिए उसमें 31 रन आए हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, और वो विकेट था शेफाली वर्मा का. 2 विकेट पर 94 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस गेंद को लॉब किया है सीधे फील्डर के हाथों में, ये गेंद जाकर समाई है. ये नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा. यस्तिका भाटिया का विकेट भारत ने इस मौके पर गंवाया है. क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था. रितु मोनी ने चतुराई भांप ली थी बल्लेबाज की, गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया, गेंद तक पहुंच नहीं पाई बल्लेबाज, और सीधे एक आसान सा कैच पकड़ा गया मिड ऑफ पर. इस तरह से भारत के लिए 3rd विकेट का नुकसान 94 पर, और यस्तिका भाटिया इस समय मैदान से बाहर जा रही हैं. 18 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन भारत के लिए एक बढ़िया पारी खेल रही थी. उनके विकेट के पतन से निश्चित रूप से जो रनों की गति है उस पर असर पड़ सकता है, और भारत का जो लक्ष्य है इस समय कि न सिर्फ मैच को जीता जाए बल्कि रन रेट, नेट रन रेट जो है उसको और बेहतर किया जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है.
0: एब्सोल्युटली. यस्तिका भाटिया अगेन just promising a lot but delivering not enough. 8 of 2 at one stage, so consequently she faced another 16 balls and she was only able to add 15 runs to that, and that sums up some of the issues that she has had in her career in T20 cricket. It brings in Jemima Rodrigues though, and I just think even though she's come in at number 5, she's probably best suited to bat at number 3. If you recall in the 50 over World Cup as well, India played its best cricket when Jemima Rodrigues came in at number 3.
1: और उसकी वजह शायद ये हो सकती है पीछे भेजने की, कि इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म उतनी अच्छी रही नहीं है. इस बार गेंद को ड्राइव किया उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए खाता खोला जेमिमा रॉड्रिग्स ने, और इस 1 रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर. सफलता निश्चित रूप से बांग्लादेश की उम्मीदों को बढ़ा रही है. 3 विकेट उन्होंने लिया है इस मैच में. संभावनाएं उनके लिए तभी बनती हैं जब वो लगातार विकेट लेते रहें, और आश्चर्यजनक कोई परिणाम उनके पक्ष में. एज भी गेंद को कट करने का प्रयास किया था रिचा ने, लेकिन गेंद बल्ले से काफी ज्यादा दूर थी, थोड़ी सी नीची भी रही, और पूरी तरह से चकमा खा गई ऋचा घोष. 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं. एक बार फिर से अंपायर से स्टांस ले रही हैं अपना, और अब खेलने के लिए तैयार हो रही हैं. लेग स्टंप का स्टांस उन्होंने लिया है, जगह चाहती हैं ऑफ स्टंप के बाहर कि मिले उनको और कोई बड़ा स्ट्रोक वो लगा सकें. उनकी बल्लेबाजी की शैली भी यही है, बड़े स्ट्रोक्स लगाती हैं, तेजी से रन बनाती हैं, और अब अगली गेंद का सामना करेंगी रितु मोनी की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ. 1 रन आसानी से फील्डर पीछे मौजूद हैं. इस 1 रन से स्कोर अब भारत का हो गया है 96 3 विकेट के नुकसान पर, जो भारत ने 3 विकेट गंवाए. दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा, और अभी अभी यस्तिका भाटिया का विकेट भी भारत ने गंवाया. एक आसान सा कैच लपका गया था मिड ऑन पर यस्तिका का. अगली गेंद और इस बार इस गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, लेकिन पॉइंट पर मुस्तैद फील्डर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका, निश्चित रूप से कुछ रन बचाने में कामयाबी मिली है।

0: इस बार 96 अभी भी भारत का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय खेमा थोड़ा सा निश्चिंत, क्योंकि उनको ये तो लग रहा है कि जीत तो उनके पाले में आने वाली है, लेकिन कितनी जल्दी आएगी इसकी भी एक संभावना भारतीय टीम तलाश रही है। अंतिम गेंद इस ओवर की, 49 गेंदों में भारत को चाहिए 41 रन। रितु मोनी की ये गेंद और इसको ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 12वां ओवर समाप्त हुआ और स्कोर भारत का 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: 42 win from 8 overs, so exactly 5 runs per over required, but quiet overs will perhaps just put a little bit of pressure on the opposition. We saw that happen in the previous over where Ritu Moni gave just 3 runs and picked up that 1 wicket, and that kind of impact will help. If another bowler or two can deliver another couple of such overs, then we can suddenly see India staring at a situation where they need somewhere in the vicinity of 6 runs per over in the last 5 overs or so. But for the moment, they seem to have this chase well under control, with 2 explosive batters out there in the middle, Richa Ghosh and Jemima Rodrigues, and still some batting firepower to come. They've got the skipper, Harmanpreet Kaur, they've got Deepti Sharma, and after that, it's basically the bowlers. So Bangladesh need wickets. Rabea has been a little inconsistent with her line and length. The leg spinner begins her 3rd over, and the very first ball outside off stump, punched away by Jemima towards sweeper cover, where Fahima Khatoon is fielding as the substitute fielder. Rabea's 2nd over particularly was rather expensive. 9 runs of it, which began with a shot which was played by Yastika Bhatia behind the stumps. And from there on, she gave another 3 to Yastika and then another couple of singles. But otherwise, it's been good tidy stuff. This time, looking for the sweep. This one will be given out, and this one, I suspect, will stay out. Although she has gone in for the review yet again, but this looked a lot closer, Dharmendra, because it kept a little low and after pitching it straightened as well.
0: Yeah, निश्चित रूप से इस बार थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है रिचा घोष के लिए। स्वीप करने का प्रयास किया, गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, गेंद पैड पर टकराई, अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ, और मुश्किलें थोड़ी सी इस समय बढ़ती हुई रिचा घोष की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गेंद लगभग स्टंप्स की लाइन में उनके पैड पर टकराई है, नीचे भी रही है गेंद, तो रिव्यू जरूर लिया है, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा ये इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि रिचा घोष मुश्किल में है।
1: एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट विद द बैट व्हाट्सोएवर, सो मिसिंग द स्वीप बाय अ ह्यूज डिस्टेंस ऑन बोथ ओकेजंस, एंड इट प्रोबब्ली जस्ट शुड सर्व एज अ लिटिल नोट दैट इन दैट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया द स्वीप इज अ शॉट व्हिच अनलेस शी इज एब्सोल्युटली श्योर शी शुड प्रोबब्ली नॉट पुल आउट ऑफ अ शेल्फ बिकॉज शी इज गॉट सो मच ऑफ पावर An ability to go straight down the ground as well. Just across the line is where she winds up in a little bit of trouble. And just judging by her body language as well, now that she's seen a replay, she doesn't seem to convince that she will escape this time. In fact, the wicket stays at umpire's call. So the height was perhaps the only factor. It wasn't a bad review in that sense. But Bangladesh have struck yet again. Richa Ghosh up at number 4, but it doesn't come off. She has to go back for 10. And it's an important wicket for Rabea Khan because she's the leg spinner. And now that she has that wicket behind her in her 3rd over, maybe she'll bowl with a lot more confidence. India rocked at 98 for 4.
0: इस बार अगर अंपायर का फैसला रिचा घोष के खिलाफ न गया होता तो शायद इस बार भी लकी वो साबित हो सकती थी, लेकिन चूंकि अंपायर ने फैसला आउट कर दिया था, गिल्लियों पर गेंद टकरा रही थी और तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया, इस तरह से भारत को लगने वाला ये एक और नुकसान और 4th विकेट गवाया है भारत ने इस मौके पर। रिचा घोष का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत के दिमाग में, भारतीय खेमे के दिमाग में जो जल्दी से जल्दी मैच को जीतने की एक रणनीति थी, उस पर काफी कुछ असर पड़ा है इस विकेट के गंवाने के बाद।
1: हरमनप्रीत कौर द स्किपर कम्स इन एंड इमीडिएटली निगर सुल्ताना ज्योति हैज अ स्लिप इन प्लेस बिकॉज शी डज लव प्लेइंग दोज लैप शॉट्स दोज स्कूप शॉट्स एज वेल। रबिया विद द वेरी फर्स्ट बॉल राइट ऑन द मनी जस्ट अबाउट एट मिडल एंड लेग एंड शी टैप्स इट अवे ऑन द ऑन साइड पिक्स अप अ क्विक सिंगल। दिस विल डू हरमनप्रीत कौर अ वर्ल्ड ऑफ गुड एज वेल जस्ट गेटिंग ऑफ द मार्क इमीडिएटली बिकॉज दिस कैन सडनली बिकम अ प्रेशर सिचुएशन। Just the way that the Richa Ghosh wicket fell, India at that stage were coasting along not long ago. They were 94 for 2. But suddenly inside 4 runs, they have lost 2 wickets and now stare at 99 for 4. And perhaps the last recognized pair. There are all-rounders after this, the likes of Deepti Sharma, as well as a couple of the bowlers who can bat quite usefully. But you don't want them coming in with too many

0: balls left or too many runs left to get. Next ball outside off stump, Jemima drives it through towards long off, picks up a single and brings up the Indian 100. 12.4 overs. The first 50 had come very quickly. That had come off just about 28 balls. But the next one has taken a slightly longer route to get there. 100 for 4. 37 required now of 44. What Bangladesh wouldn't give for something like 15 or 20 runs more in the bag right now. But that hasn't happened. And that's why they have to work with the target that they have set, India. 137 today in this crucial Group 1 encounter of this 2026 T20 World Cup. Rabia comes in once again outside off stump. Harmanpreet goes for the cut and just about eludes the under edge. Now, there's always been a spicy rivalry between her and the Bangladesh skipper, Nigar Sultana Jyoti. And surely Jyoti will be making herself as audible as possible. Just indicating to the bowler that she wants her to attack the stumps. This time it's on the stumps, but it's driven down the ground. Harmanpreet retains strike with a single. She moves along to 2. And after 13 overs, India are at 101 for 4.
1: So, 13 overs ke baad, Bharat ne bana liye hain 101 run. 4 wicket ke nuksaan par. Kaptan Harmanpreet Kaur maidan par aayi hain. Jemima Rodrigues ka saath nibhane ke liye. Jemima Rodrigues ne 5 gendon mein 4 run banaye hain. Aur Harmanpreet ne 3 gendon mein 2 run banaye hain. मान्यता प्राप्त भारतीय बल्लेबाजों की अंतिम साझेदारी. इसके बाद दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए जरूर आएंगी. वो भी बहुत अच्छे रन बनाती हैं, अच्छी बल्लेबाज मानी जाती हैं. बहुत मौकों पर उन्होंने भारत के लिए अहम पारियां खेली हैं. राधा यादव भी भारत की बल्लेबाजी में एक अहम नाम है. उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जो पिछला विश्व कप खेला गया था उसमें कई भारत को मैच जिताने वाली पारियां खेली थी. फिलहाल स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर. 42 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले को जीतकर 2 अंक अर्जित करने के लिए. और इस नए ओवर की पहली गेंद जिसको कट किया, लेकिन पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के बावजूद एक रन जरूर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज. और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की शुरुआत हुई है. बांग्लादेश को अपना अंतिम मैच लॉर्ड्स में खेलना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 जून को, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अपना मुकाबला खेलना है. अगली गेंद, इस बार इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में. जब तक मिड विकेट की फील्डर आ गया है, गेंद को उठाकर वापस करें. एक रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में. बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर. भारत ने पिछला विकेट 98 के स्कोर पर ऋचा घोष का गंवाया था, और उसके बाद से यह साझेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इस बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं. जड़ पर टकराई, एक रन आउट का मौका, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़ी हो गई थी और वापसी की कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही थी. थ्रो आया और थ्रो पकड़ा नहीं जा सका. गेंदबाज ने उस थ्रो को पकड़ा नहीं और फिर वापस जेमिमा लौट आई अपनी क्रीज में. ये किस्मत यहां पर जेमिमा के साथ.
0: कॉमेडी ऑफ एरर्स एवरीवेयर. फर्स्ट हरमनप्रीत लुकिंग फॉर द स्वीप. जेमिमा वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, ऑलमोस्ट रीच द अदर एंड, देन हैड टू पुट द स्किड्स ऑन एंड कम ऑल द वे बैक. एंड इट वाज अ पुअर थ्रो टू बी फेयर, एंड नाहिदा जस्ट कुडंट गेट इनफ कंट्रोल ओवर दैट. हैड इट बीन ऑन द स्टंप्स, दैट वुड हैव बीन अ फिफ्थ विकेट फॉर बांग्लादेश.
1: अगली गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से सामने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ. एक रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने. यह विकेट अगर भारत ने रन आउट के रूप में गंवाया होता तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की वापसी जोरदार तरीके से इस मुकाबले में हो सकती थी, लेकिन ये एक आसान सा मौका बांग्लादेश के हाथों से फिसला है. भारत के लिए राहत की बात कि अभी भी जेमिमा मैदान पर है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है. इस बार फुल टॉस गेंद, को खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, हालांकि जड़ में गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में. यॉर्कर गेंद एक तरह से हो गई थी जेमिमा के लिए. किसी तरह से अपने विकेटों से दूर ढकेला इस गेंद को. रन कोई नहीं मिलेगा. 104 अभी भी स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर. रिक्वायर्ड रन रेट 5.35 का. अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास. गेंद की लाइन को चुकी है, एक अपील हुई है विकेट कीपर की तरफ से, और क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया जाएगा, इस बात का इंतजार हालांकि

0: 74 meters. It's a massive shot and it's brought the equation considerably better for India. 24 from 32 now. Jemima on strike. This time goes inside out. Has she cleared the infield for sure, but not able to find the boundary. However, some quick running brings two, and suddenly this has turned it into a massive over. 11 runs of this over already. India at 115 for 4. Jemima on 14 from 11 balls. Harmanpreet 6 from 8. 22 runs required of 31 now. And Jyoti knows that this over is perhaps that turning point which is slowly taking this chase away from her grasp. Would she have been better off perhaps going to one of her more frontline bowlers and leaving that gamble for Sanjeeda Akhtar later in this innings? Sanjeeda comes in once again. Jemima walks across the stumps, accesses it outside off stump, and will pick up four more, making this a massive over. Ye laga, abha ka choka. 15 runs of this over. India finish it at 119 for 4, and now the finish line is definitely inside, Dharmendra.
1: Ji haan, ab to bilkul aasan sa dikh raha hai lakshya Bharat ke liye. Khaas taur par pichle over mein jo 15 run aaye, isse भारतीय टीम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है. और जेमिमा रॉड्रिग्स, जिनको फॉर्म की तलाश थी, उन्होंने एक तरह से वापसी की, आत्मविश्वास को अपने वापस संजोया है और भारत का स्कोर पहुंचा दिया 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अब 30 गेंदों में भारत को चाहिए 18 रन. अभी भी 6 विकेट सुरक्षित है. रिक्वायर्ड रन रेट 3.60 का. और स्ट्राइक पर अब कप्तान हरमनप्रीत कौर. रितु मोनी गेंदबाज के तौर पर आई है एक बार फिर से आक्रमण के लिए. बांग्लादेश की टीम चाह रही है कि साझेदारी को तोड़कर थोड़ा सा वापस लौटा जा सके इस मैच में. उम्मीदें लगभग समाप्त होती हुई सी बांग्लादेश के लिए. ये पहली गेंद और इसको एक रन के लिए खेल दिया. फिर से एक बार विकेटों के बीच में खराब दौड़ दोनों खिलाड़ियों के बीच में. आपस में टकराते टकराते दोनों बची हैं. निगाह बिल्कुल एक दूसरे पर नहीं, गेंद पर दोनों की निगाह, और वहां पर टक्कर होते होते बची है. ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन.
0: एब्सोल्युटली. एंड टू सीनियर प्लेयर्स एंड हरमनप्रीत इन पर्टिकुलर जस्ट लुकिंग सो ऑफ कलर. शी इज गोइंग फॉर रिस्की सिंगल्स. शी इज रनिंग अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर हर. इफ शी स्टेज नॉट आउट देन इट विल डू हर कॉन्फिडेंस अ लॉट ऑफ गुड.
1: अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ. गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को. मिसफील्डिंग चारन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जेमिमा ने, और जेमिमा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगाने ही है. जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है. इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी. गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला. रोका जा सकता था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद और गेंदबाज काफी निराश थे. इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128 4 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, और इस गेंद को फिर से 4 रन के लिए खेला है.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में, और ये चौका एक और आता हुआ जेमिमा के बल्ले से. स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128 4 विकेट के नुकसान पर. अब सिर्फ 9 रन चाहिए. 27 गेंदें बची हुई हैं. महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का. रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस ओवर में अभी तक 2 शानदार चौके जेमिमा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है. दबाव गेंदबाज के ऊपर. कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं, और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमिमा. बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमिमा की तरफ से. दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी. बहुत तेज तर्रार साझेदारी.
0: Absolutely. And 24 of the last 9 balls, but that first run of that 9 balls could have resulted in a run out.
1: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास. हवा में गेंद, और ये कैच लपका गया. जेमिमा का विकेट आखिरकार भारत ने गवाया है. खेलना चाहती थी ऑन साइड में. बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने. पॉइंट पर गई गेंद, और एक आसान सा कैच. इस तरह से जेमिमा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है. जेमिमा रॉड्रिग्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई हैं. 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में. लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके. उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है. हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं,

0: runs as well as India win by 5 wickets, 139 for 5 with 3.1 overs to spare. And that is something which will give them a lot of confidence moving forward for that all-important clash on Sunday against Australia, Dharmendra. But a good professional performance by India.
1: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भारत की तरफ से और दो महत्वपूर्ण अंक भारत ने जुटा लिए हैं और भारतीय टीम की ये जीत निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ग्रुप का अंतिम मैच होना है भारत का 28 तारीख को उससे पहले मनोबल बढ़ाने वाला और भारतीय टीम निश्चित रूप से सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से अपने आप को उपस्थित कराने में कामयाब रही है.
0: It was a rapid start, specially one provided by Shefali Verma. The first wicket partnership producing 31. Smriti Mandana was first to go. She was caught by Rabia Khan of the bowling of Marufa Akhtar for 8. Second to go, Shefali Verma, after completing 53 from 34 balls. She was stumped by Jyoti of the bowling of Nahida Akhtar, who was introduced as the fifth bowler by skipper Nigar Sultana Jyoti. Yastika Bhatia was caught by Rabia of the bowling of Ritu Moni for 23. That was 94 for 3. Richa Ghosh was LBW to Rabia Khan for 10. And the score then was 98 for 4. And Jemima Rodrigues was the fifth out after an explosive little innings, 26 from 15 balls. And of course, Harmanpreet Kaur and Deepti Sharma, the two not out batters at the end. So, two wickets for Ritu and one wicket for Nahida, one wicket for Marufa Akhtar, and one wicket for the leg spinner Rabia Khan. India win this match by 5 wickets and move along to 6 points in this World T20 as well. And now we'll take you through to the post match show. Kaun Banega Player of the Match?
2: Mahine ka aakhri rabivar. जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है.
2: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की.
3: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है.
2: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर.
4: प्लेयर ऑफ द मैच.
5: शेफाली वर्मा के 53 रनों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर
6: मैच जीता है और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है. सीधा चलेंगे मैनचेस्टर, जहां पर सुनेंगे कि क्या कह रही है प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा.
7: 3 of 34, top scored in the last game and in this one. How pleased are you with your batting this tournament?
8: Yeah, of course, very happy the way I batted today. But if I will be no doubt, that will be so happier for me. But yeah, good confidence today and so happy I can grab some runs.
7: 136, I think it's fair to say you might have thought you'd be chasing a little less. What was the chat when you went out to chase and what was the plan in the power play?
8: Nothing much, just backing our batting, just whatever loose ball will

0: come, we'll just go for the four or maybe six, or otherwise we'll go one run. So it's just a normal talks, not the different thing.
1: Any particular shots that you've been working on that you feel are now coming out very nicely?
0: Well, just try to, you know, choose the right ball, whatever come in my in my zone, just go for that. Otherwise, take single. It's just a very simple thing, but sometimes it's complicated a lot. But I just talk to myself a lot this time, and yeah, it's going good. I'm so happy for that.
1: What did you feel about when you got out and how you got out?
0: Of course, sad. The way I got out, as I said earlier, if I will be the not out, and that will be more happier for me.
1: I want to ask you one quick question on your bowling. You're now India's opening bowler as well. How much are you working on your bowling? At what point did this become a regular plan that, yes, Shifu's going to play a big role with the ball?
0: Well, of course, in the nets, I used to bowl with the new ball and with the old ball. Sometimes I laugh a lot. But in the end, what our team need, I'm there for that. And thanks to Harmandi, she always, give me a lot of confidence when I bowl, give me a very good field set. So just thanks to her.
1: Ready for Australia?
0: Yeah, of course. We'll go to London and see them.
1: All right. Well done today. Good luck for that one, Shefali.
0: Thank you.
2: ये थी प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा और हम हाजिर हैं इसी कार्यक्रम में इसी नाम से प्लेयर ऑफ द मैच जो अब आप सबको पता है कि कौन है. मैं हूं मदता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया.
3: बहुत बहुत शुक्रिया मदता. और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक पैनल जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय सेलेक्टर चेतन शर्मा. बहुत बहुत स्वागत चेतन एक बार फिर आपका.
4: धन्यवाद.
3: साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय धैया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर. विजय वेलकम टू द शो वंस अगेन.
5: थैंक यू सो मच.
3: और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत पर अपनी पैनी लगा दशकों से रखने वाले शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार. शशांक बहुत बहुत स्वागत आपका भी.
6: धन्यवाद.
3: चेतन जी आपके साथ शुरुआत करेंगे और वहीं से उठाएंगे जहां पर शेफाली ने छोड़ा. अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. उन्होंने कहा बड़े हरफन मौला अंदाज में कि विल गो टू लंदन एंड देन वी विल सी देम. ये जो एटीट्यूड है ये कितना जरूरी है.
4: मैं कॉन्फिडेंस कहूंगा इसको. देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है. जब जीत देखिए हर समय इम्पोर्टेंट है कि आप जीतते हैं जीत से सीखते हैं. क्या भारतीय टीम ने सीखा ये तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो बाहर आएंगी नहीं. लेकिन एक कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी. मतलब शेफाली मैं पहले से बात कर रहा था जब हम मिड शो में बात कर रहे थे ऊपर से स्टार्ट मिलेगा आप इस मैच को जल्दी खत्म कर देंगे. नेट रन रेट का मुझे चिंता ज्यादा नहीं है. देखिए आप मैच जीतते चले जाएंगे नेट रन रेट तो आएगा ही नहीं सामने. तो अब आपने बांग्लादेश को मात दी अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बारी. आपको रणनीति प्लान करना है. अच्छी बात है कुछ जो मुझे समझ आई है जमीमा का बल्ला चला आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शेफाली ने ऊपर से रन बनाए. स्मृति की कोई टेंशन नहीं है. देखिए वो अपना रन्स बना देती है. वन ऑफ आप आउट हो गए आज. तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो रन्स बने हैं आपके. तो जब रन्स बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है. लेकिन कुछ चीजें जो बीच में हुई है रनआउट्स मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप तालमेल आपका नहीं है वो थोड़ा सा बना के रखिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके नहीं देगा जो बांग्लादेश ने आपको मौके दिए. ऐसे रनआउट्स कभी वो छोड़ेगा नहीं. तो कुछ चीजें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है. हर समय क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आप करते हैं. देखिए कभी आप परफेक्ट नहीं है. आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है. इम्प्रूव करते जाइए जीतते चले जाइए.
2: जी बिल्कुल. शेफाली खुश नहीं थी आउट होने से और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूं मैं मैच फिनिश करके जाऊं. शायद ये हम सब भी देखना चाहते हैं. विजय चेतन ने बात की शेफाली के कॉन्फिडेंस की. इसके अलावा मैच्योरिटी और इंटेंट भी दिखता है अब उनकी इनिंग में.
5: आई थिंक इंटेंट आपको हमेशा नजर आएगा पर जिस तरीके से जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना जब ये खेलते हैं तो मिलियन डॉलर लगते हैं. जब आउट होते हैं तो कई बार आपको लगता है कि इस नादानी की जरूरत थी क्या. पर वो खेलते ही इसी तरीके से हैं. आप किस इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके को खिलाड़ी के देखेंगे जो इस इंटेंट से खेलेगा जो आपको पारी की इस तरीके की शुरुआत देगा उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नजर आएगी क्योंकि वो ज्यादा रिस्क उठाते हुए आपको नजर आते हैं. वो इस तरीके की क्रिकेट ज्यादा खेलते हुए नजर आते हैं. आप जब इस स्टेज पे लगातार रन बनाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है. उनको कॉन्फिडेंस शायद इस बात से भी अब देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिंग में भी दी जा रही है. सिर्फ यही है कि प्लेयर सारे बढ़िया ही होते हैं. उनको किस तरीके से आप महसूस कराते हैं और उनसे बेस्ट कैसे ले सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फिर वो अपने आप को एक प्रमुख अंग उस टीम का मानने लगते हैं जो मुझे लगता है धीरे धीरे शेफाली को वो महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ इस टीम में खेल नहीं रही हूँ मैं एक प्रमुख उस तरीके की खिलाड़ी हूँ कि जिसके ऊपर सबकी नजर रहती है और मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है.
3: और नजर हो भी क्यों ना नौवा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है उनका. और वुमेन्स टी ट्वेंटी आईज में सिर्फ हरमनप्रीत कौर मिथाली राज और स्मृति मांधना के पास उनसे ज्यादा

0: of the match awards. Live by the sword, die by the sword. That's what kind of a player she is. But another good point that Chetan raised, Shashank, was Jemima scoring those runs. Because earlier we saw in the last three matches, she looked a little bit scratchy, but the boundaries started flowing towards the end.
1: Yes, that bodes well for India as they take on Australia come Sunday. Jemima, you know, she looked as if she wants to finish the match as early as possible, also keeping in mind probably the run rate. But she took on the spinners and hit some lusty blows, and she was trying another which got her out. So this is not a typical Jemima innings. It was a breezy cameo, but it came at the right time for India, and it helped India finish the match well before the final over. So that's, and she was timing the ball well. Now she came in the middle order. Earlier she used to bat at number 3, where she had more time to build an innings and all. But if she's coming at 4 or 5 or even 6, then she needs to, you know, start hitting from the word go. And she tried to do that, and she was successful to a large extent today, which is good for India.
2: जी, और अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर्स है 2342-1083 और 2342-1085. इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूले. बैटिंग की बात चल रही है विजय, तो यास्तिका भाटिया इस मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है. जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से हम उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और पावर प्ले में बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती हैं, क्या लगता है कि अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है आज के परफॉर्मेंस के बाद?
3: जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ समय में इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया है, वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो आपके लिए, और उनकी जगह भी वही है. वो टॉप 3 में ही बल्लेबाजी आपको करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं. जमैमा के हम बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, वो जितने ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर में से जाएंगी उतनी ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की खिलाड़ी हैं कि थोड़ा सा समय ज़रूर लेती हैं, लेकिन फिर वो समय लेने की भरपाई आखिरी में आके ज़रूर कर लेती हैं. वो वैसे खिलाड़ी के लिए शुरू से ही अटैकिंग खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. रिचा उस नंबर पर नहीं आती जिस नंबर पर आज बल्लेबाजी करने आई थी. नॉर्मली आप उन्हें 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखती, वो एक फिनिशर का रोल उनका रहता है. तो शायद आज टीम टैंक है, जो थिंक टैंक है, उनका ये सोचना था कि शायद इस मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. रिचा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर है, तो शायद इस वजह से आप चाहते थे कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको और ज्यादा मिल जाए इस मैच के अंदर. पर वो खेलती एक ही तरीके से, उनको ये नहीं रहता ऑपोजिशन क्या है, उनको ये रहता है कि अगर बॉल मेरे हाफ में है तो वो अपने आप को बैक करती हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है तो 3-4 प्रमुख जो खिलाड़ी हैं आपके बल्लेबाजी में, उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन.
0: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती होने वाली है कड़ी, और मस्ट विन चुनौती होने वाली है. खैर, मस्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं. अ मस्ट इज आवर कॉलर्स, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन आवर नंबर्स एंड जॉइन इन द शो. वी हैव वन कॉलर ऑनलाइन, उनसे बातचीत करेंगे. नमस्कार, अपना नाम बताइए. जी, कहां से बात कर रहे हैं? जी, अपना सवाल बताइए. जी जी जी जी, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे. चेतन भाजी, वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई है जो मिड इनिंग शो में हमने दोबारा डिस्कस की थी, और शायद सवाल वैलिड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 4 कैच छोड़ेंगे तो फिर वहां पर मुश्किलात हो सकती है.
4: देखिए, आप किसी के खिलाफ भी अगर मैच खेलते हैं, उनके खिलाफ आप कैचेस छोड़ते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी. अगर आप सोचिए, अगर आपने आज कैचेस सारे पकड़े होते तो 110 के आसपास टोटल होता, तो यू वुड हैव इजीली वन दिस गेम. 14-15 ओवर्स में आप मैच को जीत लेते. तो आज आपने जीत हासिल की है, वो इम्पोर्टेंट है.
0: जी, और अब सीधा लेके चलेंगे आपको मैनचेस्टर, वहां पर सुनेंगे कि कप्तान क्या कह रहे हैं. सबसे पहले सुनेंगे बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को.
5: See, we have created a lot of chances in the middle, especially in the bowling, so we couldn't grab them, so they take this game away from us, and I think the way we actually bowled in the last game, we couldn't bowl.
6: How was 136 at halftime?

0: कि उनकी अटैक में क्या है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, पेसर्स भी अच्छे हैं, न्यू बॉल बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो वहां पे इतनी आसानी नहीं होगी, वो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विल बी मच हायर जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे पोजीशन से खेलते हैं। तो लेकिन फिर भी पावर प्ले में परफॉर्मेंस अच्छा था, शेफाली ने कैरी किया टीम को, बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत एग्रेशन और बहुत इंटेंट के साथ जो अक्सर हमेशा खेलती हैं वो। उसके बाद थोड़ा सा एक डाउन स्पाइरल आया, बाद में फिर जमीमा ने किया, बट कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत खुश होगी टीम मैनेजमेंट आज के परफॉर्मेंस से। सारी चीजों को हम इवन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट में हमारी जो फील्डिंग थी, बॉलिंग थी और बैटिंग थी, तीनों में कुछ कुछ कमी नजर आ रही थी, तीनों डिपार्टमेंट्स में, जिसकी वजह से हम वो मैच हारे थे। आज भी कुछ कमियां नजर आई हैं, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये क्या कैसे करते हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है उनके खिलाफ।
1: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्तर उठाना पड़ेगा। एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग विजय, हरमन सेड दैट आवर कॉन्फिडेंस हैज चेंज्ड सिंस दैट विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन नवी मुंबई। शी इज टॉकिंग अबाउट द 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, बट हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे मस्ट बी सीडिंग अबाउट लूजिंग दैट गेम एज वेल एंड दे लुक हंग्री। सो हाउ डू यू सी दैट कॉन्टेस्ट पैनिंग आउट?
2: I mean, every time they come into the ground, I'm talking about Australia, their hunger is always there. And they set the tone. I mean, like, in early 2000, their men team has set the tone for the rest of the world to catch up. The way they have played test match cricket around that time, everybody is trying to do the same thing. And then their men's team winning 3 World Cups is absolutely evident that kind of cricket they love playing. Same goes for the women's side as well. They're the most dominating side as far as the women cricket is concerned. And they take pride in that. I think they're not going to forget what happened in the Mumbai. They'll come with that sort of a mindset that they're not going to give an inch as far as the Indian team is concerned. And let's not forget, if you keep an opponent like India alive, if they beat Australia, they might meet them again.
1: Right.
2: So Australia must be thinking, let's finish one opponent here in the league stage itself. So I think the pressure is going to be on the Indian side playing against the top side, plus everything on stake.
1: एवरीथिंग ऑन स्टेक। और आपको ये बता दें कि उससे पहले एक और मुकाबला होने वाला है जो भारतीय दृष्टिकोण से अहम है, वो है दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला अब से कुछ देर में होने वाला है। ब्रिस्टल में ये मुकाबला है जिसका टॉस हो चुका है। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चेतन भाजी, ये थोड़ा सा भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का और वो बड़ा नेट रन रेट बूस्ट पाने का?
3: देखिए, मुझे अगर आप मेरी अपनी सोच से मैं बात करूं, मुझे दूसरे मैच में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मैच के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगर एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका हार जाते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप निर्भर मत रहिए। देखिए, दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल, आप क्या यहां से सीख कर गए हैं, आपने क्या गलतियां की उस पर सुधार कीजिए। एंड अगर जो नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का होना है वो मालूम पड़ जाएगा आपको 3 घंटे के अंदर, लेकिन आप अपनी तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कीजिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते वैसे ही आप थ्रू है, कोई टेंशन नहीं है। तो जो आपके हाथ में जो आपको करना है वो आप कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
2: मुझे लगता है कि रन रेट तस्वीर में नहीं आने वाला है।
3: बहुत
2: हाँ, जिस तरीके से आप पॉइंट टेबल की तरफ नजर डाल रहे हैं उसमें रन रेट बहुत बहुत मुश्किल है कि रन रेट वहां पर आए। सीधा सीधा है दोनों टीमों के लिए, आप अपने बचे हुए मैचेस जीतिए और जिंदा रहिए
4: जी। और अगला मैच नॉकआउट मैच हो सकता है भारत के लिए। विजय, अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक्सेल तो कर ही रहा है इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलने उतरता है, तो यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट माइंड सेट टू बीट देम।
2: वो मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है, आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ता है। और जैसे ही हमने प्री शो में भी ये बात करी थी कि ये टीम एक बनती हुई टीम है, इस तरफ की तरफ आप नजर डालें, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए पहला वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है अगर आप उस तरफ नजर डालेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसे बॉक्सेस है जिनको टिक करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप अगर उस टीम की तरफ नजर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे नजर आएंगे जिनके पास बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है। तो जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं वो तभी खेलते हैं जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और वो सिर्फ स्किल सेट नहीं है। एक बहुत चीज आपने यहाँ पर जिक्र की, मेंटालिटी। आई थिंक वो जिस मेंटालिटी से उतरते हैं वो एक विनिंग मेंटालिटी है। आप उनसे खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे दिन

0: जीतेंगे। कई बार आप ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा दिन तो होगा, क्या उस दिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा खराब दिन हो सकता है जहां पर हम उनको पकड़ सकते हैं। इस तरीके की धाक कुछ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले कुछ समय में जमाई है और इसी वजह से आप सिर्फ उनको स्किल से नहीं हरा सकते, आपके उस दिन मानसिकता भी उनसे बेहतर होनी चाहिए।
1: खैर, हम ये बैठे बैठे आकाशवाणी के स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं एक लिसनर के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज की जीत पर। नमस्कार, अपना नाम बताइए। राम अवतार जी, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से?
2: सर, पहले तीनों क्रिकेट के जगत गुरुओं को नमस्कार। मेरा
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सर, ये चाहता हूँ कि जैसे यस्सी का बाकी को हम तीन नंबर पे उतार रहे हैं, वो तीन नंबर पे उतार के और हरमन को उतार के और इच्छा को उतार के फूलमाली को क्यों नहीं उतार सकते? वो भी एक बहुत बेहतर बैट्समैन है, आईपीएल में हमने देखा उसका चलवा।
1: जी जी जी, तो जी शशांक, वेलकम टू यू विद दिस क्वेश्चन। भारती फूलमली स्टार्टेड ऑफ इन इंडियाज फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हेन दे फीचर अगेंस्ट पाकिस्तान, नाउ फाइंड्स हरसेल्फ आउट ऑफ द प्लेइंग 11, हाउ डू यू सी इट?
4: सो अभी जैसा कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अब आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मैचेस में इस वर्ल्ड कप में और 15 खिलाड़ियों को आपने खिलाया है, तो सारे खिलाड़ियों को आपने टेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ये सोच रखा था कि शुरू से ही कि जैसे मैच हम खेलेंगे हमारी अपोजिशन जैसी होगी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से हम अपनी टीम चुनेंगे, जिसको हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं। तो उस फुलमनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं वहां पर उनकी जगह नहीं बनती है। इसका अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं है, इंडियन टीम में है, इंडियन स्क्वाड में है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हम देखें उनको खेलते हुए, ये संभव है।
1: विजय, कुड इट बी द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम स्मृति एंड दीप्ति देयर इज नो अदर लेफ्ट हैंडर इन दैट ऑर्डर, डू यू थिंक दैट इज व्हाई दे हैव हेज्ड देयर बेट्स ऑन यास्तिका भाटिया?
0: I think before left hand right hand combination need to understand, or as the team management for us sitting here need to understand what they feel, who they think is can give you the best at the moment. They feel that Yastika Bhatia can give them what they are looking for, then comes the combination left hand right hand combination. You have to pick up the best batter in the side. In their eyes at the moment it's Yastika Bhatia, and that's the reason why they're going with them. It's very simple to understand sometimes. You know what happens is whoever is not playing, it's very easy to advocate and say that person can play as well. But the people who matter at the moment, they think that this is the person who can do the job for us and they back that person.
5: जी, और विजय थोड़ी देर पहले आपने ऋचा घोष की बात की। ऋचा नीड्स सम टाइम एंड देन शी एक्सप्लोड्स, व्हेन शी गेट्स मोर टाइम शी प्रूव्स टू बी मोर इम्पैक्टफुल एंड ऑलमोस्ट सेम एज विद जेमी आल्सो, शी परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन शी हैज टाइम टू रोटेट द स्ट्राइक एंड देन एक्सेलरेट। आज के मैच में ऋचा घोष को ऑर्डर में पहले भेजा गया, क्या ऐसा ही कुछ आप अगले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन लेंगे?
0: अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही है, क्योंकि आज ऋचा का उस नंबर पे आना आप नॉर्मली उन्हें देखते नहीं है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें कोई भी फॉर्मेट रहा है, चाहे 50 ओवर की बात करें या T20 की बात करें, आपने हमेशा उनको एक फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने वो काम किया भी है। लेकिन कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहां पर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और आपकी उतनी विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन वो मोमेंटम आपको चाहिए था, तभी ऋचा का बैटिंग ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि उनकी उनकी पास जो एबिलिटी है, कई बार आपके पास बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आपको गेम सेटअप करके देते हैं। जेमी का आपने जिक्र किया, वो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि गेम सेटअप करके देती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम सेटअप करते हैं, कुछ होते हैं जो मैच को फिनिश करते हैं। पिछले कुछ समय में ऋचा आपकी फिनिशर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो आपके जो अपने इस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रमोट करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं। उनको उनको सिचुएशन और ऑपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बैक करती हैं और ऐसे ही खिलाड़ी बढ़िया टीमों के खिलाफ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
1: एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे, ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में इस वक्त शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसके बाद आज भारत नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने एक मुकाबला कम खेला है, 3 में से 2 जीत उनके नाम अर्जित है। और अगर आज दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड्स को हरा देता है तो फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका

0: बराबरी पर आ जाएंगे और बात आएगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, ये दोनों ही मुकाबले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाएंगे। चेतन बाजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आप तो लॉर्ड्स में खेले हुए हैं, बार बार चर्चा होती है लॉर्ड्स पर उस स्लोप की और अलग डायमेंशंस की, क्या परिस्थितियां रहती हैं वहां पर और क्या वो चीजें हैं जिनका ध्यान देना होगा खासकर हमारे बोलिंग यूनिट को।
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्लोप के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दें, बिकॉज हम लोग एज ए क्रिकेटर्स स्लोप के यूज टू नहीं होते हैं। हर ग्राउंड का डिफरेंट डायमीटर्स है, तो हर ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको डिफरेंट कुछ ना किसी का अप द हिल आपको गेंदबाजी करनी है, कोई डाउन द हिल है, और लॉर्ड्स में भी ऐसा है, एक डाउन द हिल है, एक अप द हिल है। वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अनुमान लग जाता है उस चीजों का। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, देखिए लॉर्ड्स द मक्का ऑफ क्रिकेट का हर समय कहा जाता है, एक आपकी उम्मीद रहती है, एक तमन्ना रहती है कि आप लॉर्ड्स में जाएं और वहां प्रदर्शन करें। देखिए, लॉर्ड्स में खेलना एक अपने आप बड़ी बात है, लेकिन वहां पर खेलकर जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप अच्छा प्रदर्शन कुछ करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर आपका नाम जाता है, वो बोर्ड के ऊपर नाम सारी उम्र रहेगा, तय उम्र रहेगा, और जो भी वहां पर जाएगा हर क्रिकेटर आपका नाम वहां पड़ता है, तो एक आपके दिल में वो रहती है कि मैं यहां जाऊं, अच्छा प्रदर्शन करूं और इस बोर्ड में अपना नाम को शुमार करूं। और वो तभी हो सकता है भारतीय टीम के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर वहां मात देते हैं, तो मात देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने हरा दिया उनको तो ऑटोमेटिक आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए जो विजय भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर ए किल बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले इंडिया अगेन। वो अगर यहां से जीतती है इंडिया तो दे हैव टू प्ले इंडिया समवेयर और अदर, फाइनल्स में मिल सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया में दमखम है, तो दे विल गो फॉर ए किल, तो वो इंडिया को भी अपना पूरा दमखम के साथ क्रिकेट खेलनी जरूरी है।
2: जी विजय, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे नजर डाल लें तो मल्टीपल मैच विनर्स हैं उनके पास, हर मैच में एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी उभर के सामने आ जाता है जो जम के खड़ा होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं, कभी कैमियोज में कर रहे होते हैं या फिर कभी कुछ और साथ में अच्छे स्कोर्स बना रहे होते हैं। भारतीय टीम को भी एक ऐसे एंकर की जरूरत पड़ेगी। हम जो स्कोर्स देख रहे हैं कि शेफाली वर्मा ने आज शानदार खेला, लेकिन 53 पे जाके वो पारी खत्म हो गई है। वही ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को अगर हम देखें, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 74 वो बना चुकी हैं, पिछले मैच में एलिस पेरी 71 बना चुकी हैं। भारतीय टीम को इस एंकर रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है।
3: अगर आप इस फॉर्मेट की तरफ नजर डालेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम रोल है एंकर का। होता क्या है कि जो आपके टॉप थ्री हैं उनके पास सबसे ज्यादा समय है सबसे ज्यादा बॉलिंग खेलने का, तो वो आपको इसलिए नजर आते हैं सबसे ज्यादा रन बनाते हुए, या कभी भी आप देखेंगे टॉप थ्री के पास है तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शीट एंकर का रोल अदा करेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं उनका खेलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करी और जो दो नाम आपने लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेलेंगे, शेफाली से आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप इम्पैक्टफुल पारियों की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी आएगी वो दूसरे छोर से किसी और खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली अगर इस तरीके का स्टार्ट आपको देती है तो वो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देती है, जिसका फायदा दूसरे छोर से उठाना और बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी, और हम उम्मीद करेंगे 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिले। आज का दिन 25 जून भारतीय क्रिकेट में यादगार, क्योंकि लॉर्ड्स के ही मैदान में कपिल देव की उस टीम ने पहली बार विश्व कप उठाया था, और इसी कामना के साथ कि 2026 में T20 विश्व कप भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उठाए, हम लोग आते रहेंगे इस विश्व कप का ब्रॉडकास्ट आपके साथ लेके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर गिविंग योर टाइम,
3: मोस्ट वेलकम,
0: एंड थैंक यू सो मच शशांक शेखर फॉर बीइंग ऑन द
4: शो।
2: लेकिन साथ ही चलने से पहले दर्पण, हम अपनी टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें शामिल थे जयराम, संदीप दहिया, सुशील कुमार, राम आशीष यादव, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन टीम जिसमें शामिल थी कविता वी, तन्मय पंत, अमीशा पटेल, और उस सब से भी ऊपर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
0: इन सभी के एफर्ट्स, सभी के मिले जुले प्रयत्न से ये ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया है। उम्मीद करते हैं आपको सुनने में मजा आया होगा। मैं दर्पण, मेरे साथ
2: मुदिता,
0: और हम आपसे विदा लेते हैं 28 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का लाइव ब्रॉडकास्ट।

0: लेकर वापस आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।
1: प्लेयर ऑफ द मैच। अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
2: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।